ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस और उसके बाद में भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना।

9:40 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें और उसके बाद में गाने पुराने जमाने के, सुबह 10 बजे गाने नए तराने नए, 10:30 पर।

शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आपकी पसंद। 5:30 पर जयपुर से सुनेंगे धीनरी बातां।

किसानवाणी कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 7:30 पर और फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश रात 8:00।

0: रात्रि के 9 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे कुछ खास कार्यक्रम हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से। सत्र के दौरान यूसीसी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता की पालना से संबंधित जिला प्रशासनों ने निगरानी बढ़ाई। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आज जयपुर के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान में तेजी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। 16वीं राजस्थान विधानसभा का 6ठा सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा में आज प्रमुख सचिव पिछले सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन के समक्ष रखेंगे जिन पर राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है। वहीं आज कई राजनीतिक हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनमें त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल, विधानसभा के पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव कुमावत, विष्णु मोदी, बाबूलाल बैरवा और नवनीत लाल निनामा सहित 7 शख्सियत शामिल हैं। गौरतलब है कि ये सत्र करीब 5 दिन चलने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक सहित वाणिज्य कर और अन्य संशोधन विधेयक सदन में पेश किए जा सकते हैं। इससे पहले कल जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित जिलों में कार्रवाई तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही निगरानी बढ़ाई गई है। सवाईमाधोपुर में सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों से अपने लाइसेंस शुदा हथियार जमा कराने को कहा गया है। कोटपूतली बहरोड में बहरोड, नीमराणा, कोटपूतली, पावटा और विराटनगर में होर्डिंग तथा बैनर हटाए जा रहे हैं। पाली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों और आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं अजमेर में निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति रैली, जुलूस और सभा पर रोक लगाई गई है। चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए जिलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। निकाय चुनाव सदस्य की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टेक्सटाइल क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अपर्णा

0: अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान की समृद्ध ब्लॉक प्रिंटिंग और टेक्सटाइल विरासत को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने उपचारित जल को मूल्यवान संसाधन बताते हुए उद्योगों से पानी की रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देने और नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का आह्वान किया।
1: जैसा हम सबको विदित है कि राजस्थान में हमारे बहुत अच्छे टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं जो वर्ल्ड फेम के हैं, जैसे सांगानेर देख लें, बगरू देख लें, बाड़मेर में होती है ब्लॉक प्रिंटिंग। बट हमें प्रॉब्लम अभी ये फेस करना पड़ रहा है कि जो ट्रीटेड एफ्लुएंट है, जो टेक्सटाइल का एफ्लुएंट है, उसको ढंग से ट्रीटमेंट हम कैसे करें और उसका रीयूज कैसे कर सकें इंडस्ट्रीज, इस पे इसकी फोकस है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आज जयपुर के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक के सिलसिले में प्रतिनिधि हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर पैलेस का भ्रमण करेंगे। इससे उन्हें राजस्थान की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। इससे पहले कल जयपुर में कार्य समूह की बैठक हुई। इस दौरान ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यटन, सतत तथा जिम्मेदार पर्यटन, पर्यटन कौशल विकास, क्षमता निर्माण तथा निर्बाध यात्रा जैसी सुविधा पर विचार विमर्श किया गया। कार्य समूह की ये चर्चा कल होने वाली ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के लिए आधार तैयार करेगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जयपुर में एक ही दिन में 102 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 142 खाद्य नमूने लिए गए। जांच के दौरान अमानक, बासी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई करीब 900 किलो खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर 9 कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जयपुर में बिना लाइसेंस संचालित मिठाई कारखाने में करीब 300 किलोग्राम सोन पापड़ी नष्ट कराई गई और प्रतिष्ठान बंद कराया गया। मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से आउटडोर में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RN सेहरा ने इस मौसम में लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने खांसी, बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वायरल फीवर है या वायरस जनित जो बीमारियां हैं, इनके लिए हम बचाव कर सकते हैं। जैसा आप सबको पता भी, जो मौसम चल रहा है, जिससे तो मक्खी मच्छर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम खाने पे विशेष ध्यान रखें और इस

0: 14 सितंबर को भरेगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने कल मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने 3 दिन के इस मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े के मामले में श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में ई मित्र संचालकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन फसल बीमा के तहत ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कालूसर गांव में एक ही जमीन पर कई फसल बीमा पॉलिसियां जारी कर करीब 30 लाख रुपए का फर्जी बीमा क्लेम लेने का मामला सामने आया। जांच में एक ही खसरे के वास्तविक क्षेत्रफल से करीब 7 गुना अधिक क्षेत्र में बीमा कराया जाना पाया गया। विभाग ने 2 दिन पहले टोंक के मालपुरा और जयपुर के शाहपुरा में भी फर्जी फसल बीमा के मामलों में एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, इस दौरान यूसीसी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता की पालना के लिए संबंधित जिला प्रशासनों ने निगरानी बढ़ाई। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आज जयपुर के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान में तेजी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:10 हुए हैं, ये सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 हुए हैं, ये सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये है पहली प्रस्तुति।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: यह वंदना की अगली प्रस्तुति आवाज अनुराधा पौडवाल की है।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें। यह है पहली पेशकश।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म पठान से विशाल शेखर और शिल्पा राव की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये अगली पेशकश।

0: अभी आपने सुना ये गाना पति पत्नी और बहू से मीका सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अभी आपने सुना ये गाना फिल्म सिंग इज किंग से नीरज श्रीधर की आवाज में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फिल्म धुरंधर के इसी गीत के साथ गाने नए तराने नए यहीं संपन्न होता है आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 11 बजे हैं। ये सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगमोहन सुरसागर की आवाज में ये गीत एल्बम द बेस्ट ऑफ जगमोहन।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा। इस एल्बम का गाना समीर के बोल, संगीत है अदनान सामी का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार शेवन बिजनोरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: ये गजल। शायर हैं अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।
1: सरकती जाए है रुख से।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो

0: एड्स हूँ, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हूँ।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है।

0: FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच अम्सरफेन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी रात।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

यादों की महफिल कार्यक्रम में डीजे आप सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर की बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है, यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश, इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की प्रसारण। ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। 16वीं राज्य विधानसभा का छठा सत्र आज से शुरू हुआ। करीब आधा घंटे चली कार्रवाई में विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। आज सदन की कार्यवाही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गान से शुरू हुई। सदन के पटल पर राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 के अलावा एक और विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक पेश किया गया। राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 कल पेश किया जाएगा। पूर्व सदस्यों के निधन पर शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से आज त्रिमूर्ति सर्कल से विधानसभा तक पैदल मार्च किया गया। ये प्रदर्शन शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य विधायक शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने मुद्दा विहीन प्रदर्शन के चलते विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया, ये अच्छा संदेश नहीं है। 12 में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रोजेक्ट सक्षम सखी शुरू किया गया है। इसके तहत 12 में पहला ग्राम श्री मार्ट खोला गया है। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया कि मार्ट में स्वयं सहायता समूहों और वन धन केंद्रों से जुड़े शहद, मसाले और दाल सहित विभिन्न ग्रामीण उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। मार्ट का संचालन लखपति दीदियों द्वारा किया जा रहा है। शहद और चिरौंजी की प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मार्ट को अब तक करीब 40 लाख रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं और इसे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकारी योजनाओं और विभिन्न बाजारों से भी इसे जोड़ा जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाएं 28 और 29 अगस्त की रात 12 बजे तक राजस्थान की सीमा में रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में बिना किराया यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा वॉल्वो सहित अन्य प्रीमियम बसों में लागू नहीं होगी। रोडवेज के अनुसार प्रदेश में संचालित 3,200 से अधिक एक्सप्रेस बसों में महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। परिचालकों को निःशुल्क टिकट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पाली में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राजकीय बांगड़ स्कूल के मैदान को स्टेडियम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। 22 बीघा क्षेत्र में तैयार हो रहे खेल संकुल का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। यहां 6 खेलों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्टेडियम के अंदर 300 मीटर का वॉकिंग ट्रैक, 200 मीटर स्केटिंग कोर्ट और 2 राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट, सिंथेटिक वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। सभी ग्राउंड कोर्ट पर 500 से 1000 युवा अभ्यास कर सकेंगे। रात में अभ्यास के लिए फ्लड लाइट और एलईडी लाइट्स लगाई जा रही हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में करीब 1.5 महीने में 1,442 निजी और लग्जरी बसों का निरीक्षण किया। इनमें 370 बसें सीज की गईं, जबकि 976 बसों के चालान कर 2,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि वसूली गई। गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत 6 जुलाई को प्रदेश के 12 जिलों से की गई थी। बाद में 24 जुलाई से इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। अभियान का उद्देश्य निजी बसों में निर्धारित सुरक्षा और तकनीकी मानकों की पालना सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना था। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक दूर संचार भर्ती परीक्षा 2024 के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की है। साक्षात्कार 3 से 19 अगस्त तक लिए गए थे। आयोग सचिव के अनुसार वरीयता सूची में शामिल 221 अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के आधार पर नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक राजस्थान को

0: भेजा जाएगा। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। ये सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा और बड़ा लुभावना।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: बन जाती है जीवन कहानी बड़ी।

0: जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाजें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी आवाज किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया, ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब, इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहां मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है। हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है, और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना। हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बता

0: सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात के।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: स्थिति के जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की आजादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मिली फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर की आवाज है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना, एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते, बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदी होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है या

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना प्यासा फिल्म का, ये गाना गीता दत्त की आवाज में है।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

0: रहा था।
1: रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब

एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत की लाठी तोड़ो लाल।

0: भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत

0: स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन

0: कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ। प्रेम धवन के बोल, संगीत है ऐसे।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना। कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला

0: गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: नदी नारे

लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म का नाम शराबी।

0: ये पकड़। हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आसमां के।
0: हाय हाय गुरूर इतना,
1: हाँ हाँ गुरूर इतना।
0: उफ ये अदा है ये नया।

नैया। आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख

0: लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
2: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
2: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
1: हाँ।
2: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
1: बिल्कुल। तो और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहां इशारों में भी बातें होती हैं, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी
2: जी।
1: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
2: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में।
1: और चित्रकार की बात आती है ना, चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
2: बिल्कुल।
1: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
2: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
1: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप किसी भी समय कुछ भी खाते हैं। और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं ऐसा लगने लगता है।
2: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
1: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
2: बिल्कुल।
1: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
2: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
1: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है, इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
2: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है? सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
1: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन

0: इस दिन को हम आयोजन करते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
1: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए
0: जी।
1: सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली
1: बिल्कुल
0: एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़ें, प्रगति करें, एक गीत के
1: एक गीत
0: साथ
1: सुनते हैं।

तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन

0: पोषण करते हुए इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गाँव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल।

0: नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी, अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते। माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय तो सब साथ में होते थे तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गईं और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक लस्सी लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र
1: बना दिए थे।
0: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं तो सुन ले।
1: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांगने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहां कहां तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तलीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीक में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शॉल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलु, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो

0: कभी सुनी नहीं थी।
1: हाँ
0: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबरा, कुरुक,
1: कहते हैं नाम भी
0: कुरमाली,
1: शायद हमने सुने
0: लेप्चा।
1: नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि
0: बिल्कुल,
1: विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
0: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है।
0: बिल्कुल।
1: भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, और वो कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है।
0: जो
1: अगर
0: लिखित में
1: लिपि
0: नहीं
1: से
0: है।
1: हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुवी, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजो कर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
1: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं की जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं
0: बिल्कुल।
1: जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये
0: बिल्कुल,
1: बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है, या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी
0: बिल्कुल
1: भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा?
0: बिल्कुल। और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है। जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो है, जुड़ी हुई जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी। इसे
1: एक
0: बहुत
1: संदेश
0: जरूरी
1: के
0: है।
1: माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।
0: संदेश।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकता है।

0: महत्व विदेशी भाषाओं का है, या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: अच्छा, चलिए, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में
0: हाँ
1: महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन ये नहीं हो सकता। और
0: हाँ
1: बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम

0: बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है। हाँ। और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात है।
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सोचता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: हाँ, कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं,
0: हाँ
1: या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, मैंने हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ने बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए, जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है। उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं
1: बिल्कुल, एक
0: आपके।
1: हमारे जो साथी साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म कपड़े से गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: की सहेली।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बनकर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?

0: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
1: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं तो क्या हालचाल है वहाँ के?
0: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
1: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
0: अपने ये मकान वकान बनाने का ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
1: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
0: जी अभी भी साइट चलती है तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
1: तो आपको किस तरीके गाने अच्छे लगते हैं?
0: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
1: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
0: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उस 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
1: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आज।
1: जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
1: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा कुंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे हैं, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि है?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है। तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सवाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं। तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी,
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है, सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
0: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही की बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम हैं।
0: अच्छा ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो जी आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में हम लोगों के क्षेत्र में। और धान, धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कॉइन शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैम।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी की उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल, तो बताइए हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है,
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
1: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
2: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
1: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
2: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
1: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
2: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
1: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
2: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
2: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है का प्रबंधन करते हैं खेत के चारों तरफ, जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
1: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
2: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाई, पर लगा ही ना तो आज बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही हैं?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना, सब वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, सगम पम गम गम पनी पनी।

चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूट।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी है और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: जी निकलता है, तो एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे।
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं
1: भारती कार्यक्रम, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, और वो सेतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी, क्षेत्र लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो।
1: हाँ।
0: और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी
0: बहुत ऊंचाई पर है, वो बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और

0: अर्गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना तो।
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो
1: जी,
0: फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा इतिहास की फिल्म का।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार। बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहे हैं, बिमोल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी। मैं तो मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी। मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं।
1: जी।
0: तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी। मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था
0: तो बकायदा कोई
1: अभी
0: कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी। उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बोस्ती में, मेरा
0: जी,
1: इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं,
1: जी।
0: सिलाई
1: मैम
0: कोई और करता है?
1: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी। मैम मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा
0: अच्छा,
1: मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह।
1: मैं
0: इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में
0: अच्छा,

0: खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है, धान का, वही करता हूँ मैं, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है, कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है,
0: बड़ा खूबसूरत हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं?
1: मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है,
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
0: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288, यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2, यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे

0: हमें 2 महीने बाद कॉल करें जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा अभी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी आप हमें सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त टी आर इंदा। कीजिए स्वीकार प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में भी होंगे। दोस्तों आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन हम आपके ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जो फरमाइशी गाने हैं उनको पूरा करते हैं, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में थोड़ी सी बात करते हैं। युवा और उद्यमिता, छोटे शहरों से बड़े सपने, इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर आते हैं आपकी पसंद पर। आज के समय में युवा केवल नौकरी की तलाश करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी बन सकता है। यही सोच उद्यमिता की बुनियाद है। दोस्तों उद्यमिता का अर्थ है अपनी सोच, कौशल, मेहनत के आधार पर कोई नया व्यवसाय या सेवा शुरू करना। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ी है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहे हैं, छोटे शहरों और कस्बों के युवा भी अपने नए विचारों के साथ आगे आ रहे हैं। आज इंटरनेट ने छोटे शहरों के युवाओं के लिए अवसरों के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। पहले किसी व्यवसाय को बड़ा करने के लिए बड़े शहरों में जाना जरूरी समझा जाता था, लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट की मदद से छोटे शहरों से भी देश दुनिया में ग्राहकों तक पहुँचा जा सकता है। कोई युवा ऑनलाइन शिक्षा का काम शुरू कर सकता है, कोई स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग या डिजाइनिंग की सेवा दे सकता है, कोई कृषि से जुड़े नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और स्थानीय कला में भी बहुत संभावना है। छोटे शहरों की सबसे बड़ी ताकत वहाँ उपलब्ध स्थानीय संसाधन और स्थानीय प्रतिभा है। हमारे गांवों और कस्बों में ऐसे अनेक उत्पाद बनते हैं जिनकी मांग देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है। जरूरत है तो उन उत्पादों को सही बाजार और सही ग्राहक तक पहुंचाने की। सोशल मीडिया और

0: बाजार ने ये काम पहले ही की तुलना में बहुत आसान बना दिया है। आज एक छोटा व्यवसाय भी अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। स्टार्टअप संस्कृति युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करती है। जब कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू करता है तो वह केवल अपने लिए रोजगार नहीं बनाता, व्यवसाय बढ़ने पर वह दूसरों को भी रोजगार दे सकता है। इसी तरह छोटे शहरों से विचारों से कई परिवारों की आय का साधन तैयार कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस टॉपिक पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवाओं को अपने शहर में ही काम करने के अवसर मिलेंगे। रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन भी कुछ हद तक कम हो सकता है, साथ ही छोटे शहरों में कई तकनीकें और नई विचारों को विस्तार होगा। हम ये भी समझना होगा कि हर स्टार्टअप का सफल होना ज़रूरी नहीं है। असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और अपनी अगली कोशिश के लिए अनुभव देती है। इसलिए युवाओं को असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की ज़रूरत है। आज का युवा यदि अपनी समस्याओं को अवसर में बदलने की सोच रखे तो वह बहुत कुछ कर सकता है। हमारे छोटे शहरों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उस प्रतिभा को सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर देने की। स्टार्टअप संस्कृति केवल व्यवसाय शुरू करने का नाम नहीं, ये नई सोच, आत्मनिर्भरता, समस्याओं का समाधान खोजने की संस्कृति भी है। इसलिए युवा आगे आए, अपने विचारों पर काम करें और अपने शहर की ज़रूरतों को समझें। हो सकता है कि आज का छोटा सा विचार कल एक बड़े व्यवसाय का रूप ले सकता है। शायद आने वाला बड़ा स्टार्टअप किसी महानगर से नहीं बल्कि हमारे छोटे शहरों या कस्बों से निकले। यही युवा शक्ति असली ताकत है और यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी रचनात्मक सोच के साथ दोस्तों इसी टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपकी पसंद पर लौटेंगे।
7: अरे भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। अब आपकी पसंद पे लौटते हैं और सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम जिस ईमेल को शामिल कर रहे हैं वो है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नाखेलाल वर्मा ने फरमाइश भेजी है प्रदेश फिल्म से। इसी गीत को सुनना चाहा है। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, इनके साथ इस गाने को और भी सुनना चाहा है। बदलापुर मुंबई से परिणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और साथ ही साथ इस गीत को उनके साथ सुनना चाहा है। अकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर ने इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म प्रदेश का ये गीत।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: दोस्तों, अगली ईमेल हमें भेजिए, और भेजने वाले हैं पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश। भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अनाड़ी का ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में अगली ईमेल हम शामिल कर रहे हैं और इन्होंने भेजने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन्होंने भेजा है नरगोडा छत्तीसगढ़ से और इन्होंने जो गीत सुनना चाहा है वो है फिल्म कसूर से।

भेजने वाले हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। इन्होंने फिल्म चुपके चुपके का ये गीत सुनना चाहा है।

दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है ईमेल के जरिए फिल्म हमराज से। ये गीत सुनना चाहते हैं। सुनने वाले हैं ग्राम पंचायत बठेड़ा पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा। इन्होंने फिल्म हमराज का जो गीत है वो सुनना चाहा है।

दोस्तों, अगली ईमेल हमारे पास पहुंची है गांव खारिया डाणी जिला सिरसा हरियाणा से। भेजने वाले हैं सतबीर सिंह बिजरानिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजरानिया। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म संगम का ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम की अगली ईमेल हमारे पास पहुंची है और इन्होंने भेजा है दुर्गा कॉलोनी हासी से। भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू ने। इन्होंने सुनना चाहा फिल्म बंदिश का ये गीत।

तो दोस्तों ये तो था आज का युवाणी कार्यक्रम। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। आपके दोस्त TR इंदा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुफाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बाता। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।

Bakyan.

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब, कार्यक्रम सुनने से मिल सके पशुपालन से जुड़ी और सभी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया, धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भैया ने हरखू भाई और
5: बंशी भाईरा भी
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम सा राम राम सा। देखो सावण रो महीनो है और बिरखा भी ठीक होगी
5: है, नकरी हो रही है बिरखा तो भाई।
4: बिल्कुल सा, अपन एक बात बताऊं थाने, माने मिलिया है अमरचंद जी।
5: अमरचंद जी किस्सा
4: जानिया को नी, अपर गांव आया करे खलने गांव रही है।
5: अच्छा,
4: बे मने आ कहो को हूं तो देखो 12 महीना मारे बरसात रो पानी ज पियू
5: है।
4: हाँ,
5: काई बात करो थे,
4: मने आश्चर्य हो मैं कि इया किया कह देखो मारे फैक्ट्री है।
5: अच्छा,
4: फैक्ट्री में जितो भी छत पर पानी आए वो सगड़ो मैं कुंडी पर ले लूं और 12 महीने में वो ही पानी पियूं और मैं बिल्कुल निरोग हूं
5: आज रही।

0: युग रे मायने भी इन तरीके से लोग सजग होर परा
1: हाँ।
0: और बरसात रे पानी ने इकट्ठो कर उनरो इस्तेमाल करे उनने उपयोग करे
1: बिल्कुल सा। और लगो लगा बात और कही के दो मैं और बना रही हूँ फैक्ट्रिया बीरे मायने भी मैं इयांगली कुंडी बना रही हूँ के बरसात रो पानी है वो मैं सुरक्षित रख सकूं और 12 महीना पी सकूं।
0: तो जना तो फिर इनरो मतलब वो हो के भी फैक्ट्रिया रे साथे साथे उनारे जगह घर है नी उनारे मायने भी बे कुंडी बना रखोड़ी है बरसात रे पानी सारू।
1: बिल्कुल सा। और आज की चेतना है नी आप हर बार जब भी चौपाल में बैठा तो पर्यावरण संरक्षण री भी बात करा जल बचत री भी बात करा और नशे सुदूर रेवण भी इयांगली बातें आप कहा करा।
0: मैं बात शामिल करा कि भी जिका आम जन रे हित री हो
1: हाँ जिके सु जागरूकता फैले और बीरो असर भी हो। मैंने आप बात कही कि मैं थानु जी को कार्यक्रम मैं धीणे री बातें बहुत सुनिया करूं मैंने अच्छो लगे रे इयांगली जे थे बातें करो नी जड मारे मन में भी आवे कि नहीं वो संकल्प लेवणो चाहिए कि पानी री बचत बहुत जरूरी है।
0: भाई देखो सा एड़ा जका श्रोता है
1: हाँ।
0: जका सजग है और आपणी जी की बातें है जी की काम वाली है उन्होंने जीवन रे मायने ढाले और उन्होंने लाभ मिले तो फिर आ तो भाई देखो सा सुने में सुहागी वाली बात।
1: बिल्कुल सर। एक सामे प्रश्न और करियो क्या रखो भाई जी हूं थाने लाख रुपया दू थे मन एक लीटर पानी बनार बता दो।
0: वो सवाल तो भाई टिड्डो है
1: जब आप बना को नहीं सका तो बचा तो सका। हाँ
0: बिल्कुल आ बात भाई जिका ज्ञानी जना नहीं बेकया करके पानी एड़ी चीज है कि जिके ने बना नहीं सका
1: हाँ
0: पर बचावड़ो अपनो कर्तव्य है
1: अपने हाथ में भी है
0: अपने हाथ में भी
1: हाँ। साथ साथ इन बार मैं अभी देखो छापेर माने भी पढ़ने मिली टाबरिया भी बता रहा कि इन बार देखो खेजड़ी भी लोग खूब लगाई है। देखो खेजड़ी या कोई भी पेड़ लगाओ तो बहुत सोरो है
0: दोरो पर... है उनकी देखभाल करनी है। सही बात कही नहीं मैं
1: बिल्कुल सही कही। तो देखो जिका भी पेड़ लगाया है बंधु मारा भाई बंधु थोड़ो सी ध्यान रखो कि बीरो भी आपने सुरक्षित करना है संरक्षण देवण ताकि बे बड़ा हो जावे
0: और काल बे जब बड़ा हो सी
1: हाँ।
0: तो उन्होंने लाभ भी आपने और आपने जी की आने वाली पीढ़ी है उन्होंने उसी
1: बिल्कुल सा। देखो आप माइत जिका वृक्ष लगाए गया बीरो फायदा आपने मिल रही है बिहारी जी की ठंडी ठंडी छाव है आपने मिल रही है
0: जीवन दायनी ऑक्सीजन भी मिल रही है अपने
1: हाँ। और देखो आपने चौं बड़ो चौपाल मिले ज्ञान री बात तो आज ज्ञान री बात सर विषय कहीं राखे और कौन पधारी आप तो बताओ।
0: देखो सर को भाई आप बात रे मायने कही है कि थोड़ा उलझ जावा पर बात रे मायने लास्ट रे मायने कही है आप आए जावा उन विषय माथे जेड़ो आपनो जो को कार्यक्रम है तो भाई देखो सर कई लोग कागज और लिखे है कि भाई परजीवी संक्रमण कई हुए इन बाबत जानकारी दो और कई लोग लिखे कि बरसात रो जो मौसम हुए
1: हाँ।
0: उनरे मायने रोग बाग होया करे उनसे संबंधित जानकारी दो और कई जना लिखे कि भाई जे कोई बरसात रे मायने बीमार हो जावे पशु
1: हाँ।
0: तो कई करना चाहिए कई नहीं करना तो एड़ा जिका विषय है ए बात लिखी आई है
1: मतलब समसामयिक विषय हो गयो।
0: अब थे या करो कि इन सगला ने एक साथ जोड़ पर कोई विषय कोई बनेगी
1: बिल्कुल बन जैसी
0: तो बनाओ।
1: देखो विषय बने है वर्षा ऋतु माए पशुआ माए परजीवी संक्रमण आई बात ही और दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन
0: बन गया विषय। जदि तो देखो साहब बात थाने कही मैं
1: जद प्रश्न बना है नी तो प्रश्न जी का जवाब देने वाला है बियर नाम भी बता दियो
0: बिल्कुल बताओ।
1: तो देखो आज पधारिया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है और आपने मैं करा राम राम राम राम करो।
0: हाँ राम राम सर डॉक्टर साहब राम राम
2: जी। हरखू भाई बंसी भाई और सभी पशुपालक भाइयों को मेरा राम राम
1: राम राम सा राम राम सा।
0: तो पहले सवाल ठीक हो तो हूँ कर लूँ।
1: हाँ बिल्कुल।
0: हाँ तो डॉक्टर साहब सब पहले तो आप मारा पशुपालक ने और माने आ बताओ कि वो परजीवी संक्रमण कहीं हुआ करे और पशुओं में इनरे बढ़ने रो कई कारण है।
2: देखिए पशुओं में शरीर के अंदर और बाहर मिलने वाले सूक्ष्म जीव या कीड़ों को परजीवी संक्रमण कहते हैं।
0: अच्छा
2: बरसात पशुओं के लिए अच्छी भी है क्योंकि हरा चारा उपलब्ध होता है लेकिन यही मौसम कई परजीवियों के लिए भी अनुकूल होता है। नमी और तापमान से परजीवियों के अंडे और छोटे छोटे लार्वा चारागाह और गीली जगहों पर ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं इसलिए पशु जब ऐसी जगहों पर चरते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बरसात में पशु को केवल बारिश और ठंड से नहीं परजीवियों से बचाना भी जरूरी है।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सा के परजीवी संक्रमण कहीं हुआ करे पर डॉक्टर साहब बात आवे है कि पशुपालक किन बात पहचान कर सके कि उनरा जगह पशु है उनरा माय परजीवी रो संक्रमण हो गया है बा पहचान की।

0: क्या करे।
1: देखिए किसान अपने पशु को रोज देखता है, इसलिए सबसे पहले बदलाव वही पहचान पाता है। अगर पशु धीरे धीरे दुबला हो रहा है, कमजोरी आ रही है, बाल रूखे हो रहे हैं, भूख कम लग रही है, दस्त या पतला गोबर आ रहा है, दूध कम हो रहा है या बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा, तो परजीवी संक्रमण की संभावना हो सकती है। कुछ मामलों में खून की कमी के कारण आंखों और मुंह के अंदर की सतह का रंग सामान्य गुलाबी के बजाय फीका दिखाई देता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हर दुबले पशु को कीड़ा नहीं होता, इसलिए बार बार अपने मन से दवा देने के बजाय जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक से जांच करवा कर ही उपचार के लिए बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, देखो अपन ये लगे कि पशु थोड़ा अनमन है तो अपन आ दवाई दे दिया ना, इसको अपन काम नहीं करना। थोड़ा बहुत थाने बैम हुए कोई कि हमारा पशु निरोगो नहीं है, है कोई न कोई इन्हें कोई समस्या है, तो अपन तुरंत डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। अब जिकी दवा बतावे, जितनी मात्रा में बतावे, वह अपन ने दवा देनी है।
2: बिल्कुल,
0: खुद भी होशियारी को नहीं लगा
2: सच्ची बात क्या होते हरकू भाई एकदम। और इन बातों पर चले नहीं तो फिर वो जीवन है नहीं, वो आसानी से चलते रहे।
0: बिल्कुल सर, अपना पशु भी निरोगा रहे।
2: और देखो सर, डॉक्टर साहब जी अपर क्या करें कि भाई घर में मायने एक छोटो सो लड्डू टाबर ने देवा नी, टाबर रो मन कहीं करे कि और मिल जावे माने लड्डू, तो बिहार बिहार डॉक्टर साहब ज्ञान री बात बता रही है नी,
0: थे एक लड्डू और ले लो।
2: मारो को नहीं भाई, हूं को नहीं लेवनो चाहूं। हां आ बात अलग है कि उनसो लाभ तो झगड़ा नहीं मिलसी, मिलसी तो देखो सा ए जगह राजू भाई है नी, कागज में लिख भेजियो कि भाई डॉक्टर साहब सवाल पूछो।
0: बोलो बोलो भाई।
2: तो डॉक्टर साहब राजू भाई लिखे कि पशुआ परजीवी जिका है बे पशुआ रे दूध और उनरे भजन माथे भी कोई असर डालिया करेगी, जे डाले तो किन भात।
1: परजीवी पशु के शरीर में जाकर उसके भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का फायदा उठाते हैं, और कुछ परजीवी खून की कमी भी करते हैं। इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है। पशु का वजन कम बढ़ना, दूध का कम होना, बच्चे की बढ़वार धीमी होना और पशु का कमजोर रहना, इसलिए परजीवी नियंत्रण को केवल बीमारी की रोकथाम नहीं समझनी चाहिए, ये पशु के उत्पादन क्षमता और किसान की आय बचाने का भी एक अच्छा तरीका है। जैसे पशु अगर दिन में घर पे अच्छे से खाना खा रहा है, अपने सारे काम वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। अगर उसके अंदर परजीवी का संक्रमण हो रखा है तो कई बार अपने सामान्य जीवन स्तर पर भी पशु जो है वो उस परजीवी से लड़ने के लिए काम कर रहा है, जिससे उसका उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होके उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में लग जाता है। इसलिए जो पशु बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, वो पशु भी परजीवी से संक्रमित हो सकता है, उस पर भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है जितना कि किसी लक्षण दिखाते हुए पशु से।
0: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। और अब एक अगला प्रश्न और मैं पूछ लूं।
2: हाँ पूछो सर।
0: डॉक्टर साहब, जब बरसात शुरू हुए तो उन बेला पशु ने कृमिनाशक दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हमारा कई भाई जानना चाहे।
1: पशु को ये जो कृमिनाशक दवा है ये देने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसे दवा की जरूरत है या नहीं। यानी सिर्फ बरसात आ गई है और हर पशु को बार बार हम कृमि नाशक दे दें, ऐसा जरूरी नहीं।
0: अच्छा,
1: ये पशु की उम्र, प्रजाति, चराई की स्थिति और उस क्षेत्र में परजीवी संक्रमण की समस्या पर निर्भर करता है। जहां तक संभव हो गोबर की जांच कराकर पशु चिकित्सक की सलाह से ही कृमि नाशक देना चाहिए। और दवा देते समय ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सही दवा, सही मात्रा और सही समय पर ही दवाई अच्छा असर दिखा पाएगी।
0: जी,
1: बार बार बिना जरूरत दवा देने से आगे चलकर दवा का असर कम होता है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता में कमी कहते हैं।
0: तो केवल मतलब वो है डॉक्टर साहब के कृमिनाशक दवा भी डॉक्टर साहब से पूछ प्रोर देनी चाहिए, इधर कोई विशेष समय
1: बरसातों से पहले इस दवा को देते हैं, क्योंकि बरसातों में कृमि जो पैरासाइट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके संक्रमण के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए बरसात से पहले ये दवाई दे दी जाती है। पर जहां तक शोध बताता है, यहां पर जब तक हम इसकी जांच ना करवा लें और सही संक्रमण का पता ना लगा लें, तो ये दवाई नुकसान ज्यादा करती है ठीक करने के बजाय।
2: डॉक्टर साहब, रोग हुए रोग रो उपचार हुए दवाओं से, पर सवाल अठे वो आवे डॉक्टर साहब के दवाओं रे अलावा पशुपालक परजीवी संक्रमण ने कम करने खातिर दूजा कई उपाय कर सके।
1: ये एक अच्छी सोच है कि परजीवी नियंत्रण सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बहुत सारे आसान प्रबंधन के तरीके

0: मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जिसको हम फार्म पे कहते हैं, जैसे कि पशुशाला को साफ और सूखा रखना, गोबर को नियमित वहां से हटाना, पानी जमा ना होने देना, पीने का पानी साफ रखना, बहुत गीली और दलदली जगहों पर लगातार चराने से बचना, क्योंकि ये सब जगहें जो हैं ये परजीवियों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह है और इससे उनकी तादाद बढ़ती रहती है। तो साफ सफाई रखना उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, परजीवियों का जो नंबर है वो कम होता है, इसलिए हमें साफ सफाई रखना जरूरी है। जहां तक संभव हो चारागाह में एक ही जगह लगातार पशुओं को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि वहां का संक्रमण बार बार पशुओं को मिलता है और पशु भी अपनी संक्रमण की जो स्टेजेस हैं जो आगे दूसरे जानवरों के लिए वहीं रिलीज कर रहे हैं। इसलिए एक जगह पर जहां पर आपने चराया वहां पर आप थोड़ी देर के लिए गैप देंगे या समय डालेंगे तो वो जो स्टेजेस वहां पर जानवर से निकली डिस्चार्ज हुई वो तब तक के लिए खत्म हो जाती हैं, और गैप डाल के जब हम दूसरी बार वहां पर चराने के लिए ले जाते हैं जानवर को तो वो जो पास्चर लैंड है वो उस इन्फेक्शन से फ्री रहता है, इसलिए गैप डालना जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि परजीवियों को पशु के शरीर में पहुंचने का मौका कम से कम मिले।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि समय रज का अंतराल है भी आपने विशेष ध्यान रखना है, और अगर वो आप ध्यान रखते हैं तो आप पशु निरोगा रहसी है नी।
2: कह भी करें कि परिवर्तन है नी जो सृष्टि रो नियम है, तो बिहार बिहार जे आपने जो चरावण ने मायने अगर थोड़ा परिवर्तन कर ले तो भाई जीवन दान आपने पशुआ ने मिले।
1: बिल्कुल मिले सा, और मिले है ज्ञान री बात रे साथ साथ मनोरंजन भी।
2: हूँ समझ रही हूँ थारी बात ने।
1: समझ रही हो नहीं?
2: एकदम ज्ञान है साथे मनोरंजन भी जरूरी हुआ करे
1: हुआ करे। तो सुनो भाया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया आभार आप सुनियो और एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। और आज आप बातचीत कर रहे हैं वर्षा ऋतु माय पशुआ माय परजीवी संक्रमण दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन विषय पर आज आप बातचीत कर रहे हैं।
2: और देखो सा हरखू भाई अपना जो गीत तोड़े सुन रहे था नहीं तो देखो सा दो तीन तरह का सवाल लिख प्रार दिया है तो उन्होंने आप के साथ कर दा। तो डॉक्टर साहब आस पास मिलन वाला पेड़ पौधा पशुओं खातिर किन बात उपयोगी हो सके और साथ साथ आप माने आप भी बताओ कि गुड़ हल्दी नीम और लहसुन जरा देसी उपाय किन बात पशुओं खातिर अच्छा हो रहा करे इन बाबत भी आप जानकारी दे।
3: देखिए हमारे देश में कई पारंपरिक उपाय पीढ़ियों से इस्तेमाल होते आए हैं। राजस्थान में भी नीम, खींप और काली जीरी जैसे पौधों का परजीवी नियंत्रण में पारंपरिक उपयोग दर्ज किया गया है। नीम और लहसुन के संयोजक पर गायों में वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है जिसमें परजीवी अंडों में कमी देखी गई। लेकिन किसान भाई यहाँ पर एक सावधानी जरूर रखें कि देसी है इसलिए चाहे जितना चाहे दे दें, ऐसा नहीं। डोज इसका बहुत इसका इन उपायों की मात्रा, पशु की प्रजाति और उनकी स्वास्थ्य स्थिति महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक की सलाह से सहायक उपाय के रूप में अपनाना बेहतर है। गंभीर संक्रमण में प्रमाणित कमीनाशक उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर मिलने वाले कई पेड़ पौधे अच्छे चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं, जैसे खेजड़ी की पत्तियां और कुछ क्षेत्रों में पाकर और अमरूद की पत्तियां तथा नीम की पत्तियां भी पशुओं को दी जाती हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिन पर परजीवी नियंत्रण और पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। लेकिन फिर मेरी सलाह यही होगी कि किसी भी पत्ती को दवा समझकर अधिक मात्रा पर ना खिलाएं। इन्हें सामान्य संतुलित आहार के साथ हिस्से के रूप में उपयोग करें। इससे हरे चारे के प्रबंधन और पशु आहार की प्रतिरक्षा नियामक या इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट को भी बढ़ाया जा सकता है।
2: जी क्या मतलब वही अर्खू भाई डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी बात बताई कि भाई देसी है इन्होंने मतलब वो

0: के बेसी देदा है हर चीज रो एक अनुपात है जो को बहुत जरूरी हुआ करे इन जीवन रे माय भी और दवा रे रूप रे माय ने अपना जे अगर देसी पेड़ पौधा री चीजा देवा तो उन रो भी।
1: और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहा कि देखो बरसात रो मौसम है तो इन मौसम रे माय ने पशुआ ने कई खिलावण पिलावण चाहिए ताकि उन री जकी ताकत है बा रोगा सु लड़ने री जकी क्षमता है बा बनियोड़ी रहे।
2: इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित आहार। बरसात में हरा चारा खूब मिलता है लेकिन केवल हरा चारा पर्याप्त नहीं, उसके साथ उचित मात्रा में सूखा चारा, दाना, प्रोटीन का स्रोत और मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। पशु को साफ पानी लगातार उपलब्ध होना चाहिए। एक सरल बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मजबूत पशु का आधार केवल दवा नहीं अच्छा पोषण भी होता है। अगर पशु पहले से ही कमजोर और कुपोषित है तो वह परजीवी संक्रमण का सामना भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और उसकी वृद्धि, उत्पादन और प्रजनन क्षमता में भी कमी आएगी। जहां तक गुड़ और हल्दी इन सब चीजों की बात है, गुड़ का उचित मात्रा में ऊर्जा के स्रोत के रूप में आहार में शामिल किया जा सकता है और हल्दी को पारंपरिक रूप से हम उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों से मैं या पशुपालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि गुड़ या हल्दी किसी परजीवी संक्रमण की दवा नहीं है। इनका उपयोग सहायक आहार के रूप में किया जा सकता है लेकिन पशु की अच्छी प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जरूरी है संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, साफ पानी और अच्छी देखभाल।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दी
0: भाई। देखो सारखू भाई बड़ा री बात करा नहीं जाए साथ साथ छोटा री जरूरी हुआ करे। तो डॉक्टर साहब नवजात बछड़ा बकरी रा बच्चा और मेमना जेड़ा जगह पशु है वे परजीवी संक्रमण से ज्यादा ग्रसित हुआ करे क्या भी करे और आप देखा भी हाँ तो कहण रो मतलब उन्होंने जल्दी संक्रमण हुआ करे। तो आप बात कितनी सच्ची है और अगर जी आप बात साची है तो इनके बारे में जानकारी दो सर।
2: जी हाँ, छोटे बच्चे और बढ़ते हुए पशु उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होती और अगर उन्हें पर्याप्त पोषण ना मिले तो परजीवी संक्रमण का असर ज्यादा हो सकता है। इसलिए बरसात में बच्चों की साफ सफाई, सूखा बिछावन, स्वच्छ पानी और अच्छा पोषण बहुत जरूरी है। अगर बच्चा लगातार दस्त कर रहा है, कमजोर हो रहा है या उसकी बढ़वार रुक रही है तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज ना करें। जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क कर उसकी जांच करवाएं और उपचार के लिए पढ़ें।
1: जी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि बरसात में परजीवी नियंत्रण रो सबसे सरल तरीको पशुपालक खातिर कहीं हो सके है।
2: देखिए जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं किसान भाइयों को पांच बातों का नियम मैं बताना चाहूंगा जिससे वो परजीवी संक्रमण में कंट्रोल कर सके। पहली बात, पशुशाला साफ और सूखी रखें
1: जी।
2: दूसरी, साफ पानी दें और पानी जमा ना होने दें। तीसरी, हरा और सूखा चारा संतुलित रूप में दें। प्रोटीन इंटेक, मिनरल मिक्सचर का भी ध्यान रखें
1: जी।
2: चौथी, कृमिनाशक दवा जरूरत के अनुसार सही मात्रा और सही समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से दें। और पांचवी, पशु में कमजोरी, लगातार दस्त, वजन या दूध में कमी दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि अपने पशु को रोज ध्यान से देखें। किसान की नजर से बेहतर कोई शुरुआती जांच नहीं होती। अगर वो इनमें से कोई भी लक्षण जानवर में देखता है तो उनको जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। तो किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए जो विशेष संदेश मैं देना चाहूंगा वो ये कि बरसात में परजीवी दिखाई नहीं देते लेकिन उनका असर पशु के शरीर और उत्पादन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमारे पारंपरिक उपायों का उपयोग भी जानकारी और पशु चिकित्सक की सलाह के साथ ही करना चाहिए
1: जी।
2: स्वस्थ पशु ही स्वस्थ परिवार और बेहतर आय की नींव होती है।
1: बिल्कुल सर, देखो चालती चालती बेला जो संदेश दिए है नी वो पूरी बात रो आप जो प्रश्न हो भी रो सार आए गए रामायण
0: हर खूब भाई। जिया बीमारी हुए नी उरा लक्षण दिखे उन दिखे नी बिहार बिहार जियार जियार ज्ञान मिले नी आदमी ने तो ज्ञान रो जो खजानो बढ़े नी तो उनका भी लक्षण दिखा थे पूछो किया। भाई देखो सर जिया डॉक्टर साहब बता रहा था कि भाई पांच सिद्धांत बताऊं, पांच नियम बताऊं तो भाई देखो सर सगला जना तीस लिख रहा है कॉपी पेन लेर पर
1: बिल्कुल
0: कहीं बना कहीं जना तो देखो सा मोबाइल ने मैंने रिकॉर्डिंग कर ली
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल।
0: कोई जे बात जे है नी कोई छूट जाए तो उन्होंने बाद में मैंने सुन सके।
1: बिल्कुल साहब, देखो बातें करना तो बहुत मन है डॉक्टर साहब से लगे और प्रश्न कहीं पूछता ही नहीं अपन समय रिजगी देखो
0: घड़ी है कोई इशारो कर देवे आप
1: वीर तो पालन करना ही पड़ती था भैया। अब देखो आगे ले उन्होंने समय आ गया है तो आपने मैं बता दूं सा कि आज चौपाल में जानकारी जीवन स्वरूप पदार्या राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

0: विद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और आदा पर बातचीत करी वर्षा ऋतु माय पशुआ माय परजीवी संक्रमण दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, आप चौपाल में पधारिया और हमारे पशुपालका ने बहुत ही बढ़िया आचीर ज्ञान वर्धक जानकारी दी। इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेनेरी बातें। कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिश्नोईरी। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी साहब, तो कोई बात नहीं, पर आज किया बैठा हो
5: काई करूँ था बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और विरोध जिस और कौन।
4: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी साहब, कार्यक्रम सुनी पशुपालन ऐसी समाधान।
6: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बात्या।

0: धीनेरी बात आई। ये अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागपुर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों

0: के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सावन को आने दो के इस गीत से। गीत को आवाज़ दिया जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और उनके साथियों ने।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: दोस्तों फिल्म संगीत का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म बीवी हो तो ऐसी। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और उनका साथ दे रही है अनुराधा पोडवाल।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए। हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। ये गीत आप अभी सुन रहे थे फिल्म बीवी हो तो ऐसी से। चलिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म चितचोर से। इस गीत को फिल्म का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, फिल्म का नाम है चितचोर। इस गीत को आवाज दी है यसुदास ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तन संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत और वचनों पर आधारित कार्यक्रम माटिक के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रमजान छाया और ट्विंकल वैष्णव को।
1: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र। यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रमजान छाया और ट्विंकल वैष्णव को। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ, विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान निशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टे जारी नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर कथित बल प्रयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की और देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का कोटा रोल खुर्द सेक्शन पर सफल ट्रायल। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। 16वीं राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष के नेता शामिल नहीं हुए। छठे सत्र के पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से विरोध प्रदर्शन छोड़कर सदन के भीतर आने और लोकतांत्रिक मर्यादा से अपनी बात रखने की अपील की।
1: मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन के कार्रवाई में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर उसको रखें। निश्चित रूप से विपक्ष को पूरा सम्मान भी है, पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादा पूर्ण नियमों के तहत, और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है कि उस पर अपना संज्ञान लेकर के उसके सकारात्मक उत्तर दें।
0: विपक्षी सदस्य विधानसभा परिसर के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करते रहे और सदन में नहीं आए। इस स्थिति के बीच सदन के पटल पर दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 भी शामिल है। श्री देवनानी की अध्यक्षता में आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें मॉनसून सत्र की अवधि और कामकाज तय किया गया। सत्र के संक्षिप्त रहने की संभावना है। उधर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के रवैये को गैर लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने विपक्ष से संसदीय परंपराओं का पालन करने की अपील की। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी सहित कई मुद्दों पर चर्चा चाहता है, किंतु उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही स्क्रीनिंग, जांच और इलाज को सघन करते हुए टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव वी

0: निवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। उन्होंने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को गति देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों का समुचित उपचार करने के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की भी स्क्रीनिंग और जरूरत के हिसाब से रोग निरोधक उपचार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 6,500 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 2,38,00,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, साथ ही टीबी रोगियों को 2,00,000 से ज्यादा पोषण किट वितरित किए गए। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक रहेगी। नगरीय विकास और आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के दौरान निःशुल्क और रियायती पट्टा जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी भी संस्था और व्यक्ति को भूमि आवंटन भी नहीं होगा। शहरी सेवा शिविरों में भी इस दौरान कोई पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि में विभिन्न विभागों के स्पष्टीकरण और रियायत संबंधी मामले सीधे तौर पर आयोग को नहीं भेजे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद ही इन्हें आयोग को भेजा जाएगा। निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियमों की जानकारी दी और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है।
1: चुनावों की रूपरेखा दे दी है, जिसके तहत हमारे कोटपुतली बहरोड में 2 चरण में चुनाव होने हैं, 9 सितंबर और 11 सितंबर को और 14 सितंबर को मतगणना रखी गई। उसी उपलक्ष्य में आज सभी दलों की बैठक रखी गई थी। इसी अपील के साथ कि तो सभी दल एनसीसी की पालना करें पूर्ण रूप से और शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में यहाँ पे चुनाव हो, यही बातचीत की गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर कथित सुरक्षा बलों द्वारा कथित बल प्रयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने ये समिति नियुक्त की है। गौरतलब है कि दिल्ली में 20 जुलाई को कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में संसद तक निकाले गए मार्च के दौरान हिंसक झड़पें हुई। भीड़ द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने के चलते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। राज्यभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत कर चोरी करने और बिना वैध दस्तावेज के माल परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। विभागीय कार्यवाही के तहत इस महीने अब तक 13 परिवहन वाहनों को पकड़ा गया। विभाग की ओर से सभी ट्रांसपोर्टरों और करदाताओं से अपील की गई है कि वे माल का परिवहन करते समय टैक्स इनवॉइस, ईवे बिल अनिवार्य रूप से साथ रखें। माल परिवहन संबंधी दस्तावेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर परिवहनकर्ता के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का कोटा रोल खुर्द सेक्शन पर सफल ट्रायल किया गया।

0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में प्लेटफॉर्म आधारित सुपर फास्ट पार्सल फ्रेट ईएमयू रैक का खाली अवस्था में ऑसिलेशन ट्रायल आज पूरा किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रायल के दौरान कई चीजों की जांच की गई। 135 किलोमीटर की रफ्तार के दौरान इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, थर्मल क्षमता और अन्य तकनीकी आकलन किए गए। परीक्षण के दौरान चौमहला से शामगढ़ के बीच रैक को पहले 120 और फिर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। वहीं अंतिम चरण में चौमहला से गोडला के बीच इसे अधिकतम 145 किलोमीटर प्रति घंटे की परीक्षण गति पर सफलतापूर्वक दौड़ाया गया। वर्तमान में निर्धारित कार्यक्रम के तहत रैक की विद्युत और प्रणोदन प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विद्युत संबंधी परीक्षण भी किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण ट्रायल में कोटा मंडल के लोको पायलट, मुख्य लोको निरीक्षक और यातायात निरीक्षक के साथ चेन्नई की एकीकृत कोच फैक्ट्री और अन्य विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन बारिश का दौर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात के आसार हैं। आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल से 23 अगस्त तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी परिस्थितियां अधिकतर हिस्सों में कमजोर रहने के आसार हैं। बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच आज दोपहर में कोटपुतली बैरोड के विराटनगर और नारायणपुर में तेज हवाएं चली और हल्की बरसात हुई। बीते 24 घंटों में बांसवाड़ा में करीब 1 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा खैरतल तिजारा, बारा, कोटा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर जिलों में भी हल्की बरसात दर्ज हुई। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री को पार कर गया। डीग जिले की 220 पंचायतों में 440 अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। इनके माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। डीग के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि इन वाटिकाओं में जैविक सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे जिनका उपयोग महिलाओं और बच्चों के पोषाहार में होगा। इसके लिए राजीविका समूहों और ग्राम पंचायतों के साथ बैठक कर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये वाटिकाएं राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 82वीं जयंती है। श्री गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। देशभर में उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव, आदर्श आचार संहिता के दौरान निःशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टे जारी नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर कथित बल प्रयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की। और देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का कोटा रोलखुर्द सेक्शन पर सफल ट्रायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से आचार संहिता का पालन करने के लिए कड़ाई से निगरानी की जा रही है। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक राज्य एक चुनाव के तहत नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित किया। इसमें प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में होंगे। सदस्य पदों के लिए लोक सूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की आखिरी तारीख 3 सितंबर तक निर्धारित की गई है और चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। कोटपुतली नगर परिषद के अलावा नगर पालिका

0: पावटा प्रागपुरा विराटनगर नारायणपुर और बानसूर में पहले चरण में मतदान 9 सितंबर को होगा। नगर परिषद बहरोड, नगर पालिका नीमराणा, नगर पालिका मांढण और नगर पालिका बड़ौद में दूसरे चरण में मतदान 11 सितंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। जिले में कुल वार्डों की संख्या 325 है। 80वां स्वतंत्रता दिवस गरिमा हर्षोल्लास के साथ जिले भर में मनाया गया। कोटपुतली के राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। संविधान के मूल्यों, देश की एकता और अखंडता तथा सामाजिक समानता को मजबूत करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान की धूम रही। कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय तिरंगा प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस दौरान युवाओं और स्थानीय प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। जिले में पंच गौरव योजना को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों, वित्तीय प्रावधानों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। जिले में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गाजर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार करने और गाजर उत्पादकों का FPO गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान के तहत अलवर के विजयनगर ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली के सभागार में लाइव प्रसारण किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले के सभी उपखंडों और ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जिले के 67 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनकी कुल लागत 198 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2027 के पंजीकरण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और जयपुर संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय की प्राचार्य संजू जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर संभाग के तहत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुल 66 जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। पंजीकरण की संख्या में हुई बढ़ोतरी के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा ने 2563 पंजीकरण की बढ़ोतरी दर्ज कर संभाग में पहला स्थान हासिल किया है। कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहले आज री खास खबरां। राज्य विधानसभा रो मॉनसून सत्र आज सू शुरू हुयो। विपक्ष सदन री कार्रवाई माए हिस्सो नी लियो। राज्य माए नगरीय निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता रे चालता निशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टा जारी नी वेला। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली रे जंतर मंतर माथे छात्र प्रदर्शन माथे कथित बल प्रयोग री जांच खातिर उच्च स्तरीय समिति गठित करी। और देश री पहली वंदे भारत फ्रंट ट्रेन रो कोटा रोल खुर्द सेक्शन माथे सफल ट्रायल। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार। 16वीं राजस्थान विधानसभा रा मॉनसून सत्र री आज सू शुरुआत हुई। सुवारे 11 बजे शुरू हुई विधानसभा री कार्रवाई माए विपक्ष रा नेता

0: भेड़ा नीविया छठे सत्र रा पहले दिन आज सदन माए दिवंगत नेताओं ने श्रद्धांजलि दिरी जी शोक प्रकट पाछे सदन री कार्रवाई काले ताई रे खातिर रोक दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सदन माए विपक्षी सदस्यों री गैर मौजूदगी माथे नाराजगी जताई वणा कांग्रेस विधायका सु विरोध प्रदर्शन छोड़ अर सदन रे माए आवण अर लोकतांत्रिक मर्यादा सु आपरी बात रखने री अरज करी।
1: मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन की कार्रवाई में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर वो रखें। निश्चित रूप से विपक्ष को पूरा सम्मान भी है, पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादा पूर्ण नियमों के तहत, और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है कि उस पर अपना संज्ञान लेकर के उसका सकारात्मक उत्तर दें।
0: विपक्ष सदस्य विधानसभा परिसर रे बारे ही विरोध प्रदर्शन करता रिया और सदन माए नहीं आया। इन स्थिति रे बीचे सदन रे पटल माथे दो खास विधेयक पेश कराया गया। इन माए राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 भी भेड़ो है। श्री देवनानी री अध्यक्षता माए आज कार्य सलाहकार समिति री बैठक भी। इन माए मानसून सत्र री अवधि और कामकाज तय करो गयो। सत्र रे छोटो रहने री आस है वठीने सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विपक्ष रे रवैये ने गैर लोक तांत्रिक बतायो वणा विपक्ष संसदीय परंपरावां रो पालन करने री अरज करी। वठीने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया सु बणथल माए कयो के विपक्ष सरकारी स्कूलां री स्थिति शिक्षकां री कमी समेत कई मुद्दा माथे चर्चा चावे है पण वाने विधानसभा माए आवण नी दियो जा रियो है। प्रदेश ने टीबी मुक्त बनाने खातिर जन भागीदारी ने बेसी मजबूत करियो जावेला, साथे ही स्क्रीनिंग जांच और इलाज ने सघन कर्तव्या टीबी मुक्त भारत अभियान री प्रगति री रोजाना मॉनिटरिंग पक्की करी जावेली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए इन बारा माए बैठक ली वणा प्रदेश ने टीबी मुक्त बनाने रे प्रयासा ने गति देवन रा हुकुम दिया। मुख्य सचिव कयो कि कमजोर प्रदर्शन करण वाला जिला माए खास ध्यान दियो जावे वणा कयो कि टीबी रोगियां रा समुचित उपचार करने रे साथे ही वाणे परिवार रे सदस्यां री भी स्क्रीनिंग और जरूरत रा हिसाब सु रोग निरोधक उपचार पक्को करियो जावे। बैठक माए चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि प्रदेश माए टीबी मुक्त पंचायतारी संख्या माए बढ़ोतरी हुई है। लाडला बरस 6000 पंचायता टीबी मुक्त घोषित करी जी वणा बतायो के अभियान रे तहत प्रदेश माए 2,38,00,000 सु 32 लोगों री स्क्रीनिंग करी जी, साथे ही टीबी रोगियां ने 2,00,000 सु 32 पोषण किट भी बांटिया गया। राज्य माए नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने रे साथे ही आदर्श आचार संहिता लागू वेगी है। आज चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने ताई रवेली नगरीय विकास और आवासन और स्वायत्त शासन महकमा साफ कयो है कि आचार संहिता रे चालता मुफ्त और रियायती पट्टा जारी नहीं करया जावेला। न्यारा न्यारा जिला निर्वाचन अहलकारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियमारी जानकारी दी और जरूरी दिशा निर्देश जारी करया। चुनाव ने लेर जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय हो गया है। इन्हीं कड़ी माए कोटपुतली बहरोड जिला निर्वाचन अहलकार बतायो कि स्वतंत्र पारदर्शी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करावण खातिर सगली जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वणा बतायो कि सगला दलासू आदर्श आचार संहिता रो पालन करने री अरज करी जी है।
2: चुनावों की रूपरेखा दे दी है जिसके तहत हमारे कोतवाली बहरोड में दो चरण में चुनाव होने हैं 9 सितंबर और 11 सितंबर को और 14 सितंबर को मतगणना रखी गई। उसी उपलक्ष्य में आज सभी दलों की बैठक रखी गई थी। इसी अपील के साथ कि तो सभी दल एनसीसी की पालना करें पूर्ण रूप से और शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में यहाँ पे चुनाव हो, यही बातचीत की गई।
0: ऐ खबरें आप जयपुर अजमेर केंद्र से सुन रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली रा जंतर मंतर माथे हुआ छात्र प्रदर्शन माथे कथित सुरक्षा बलों कानीसू कथित बल प्रयोग री जांच खातिर उच्च स्तरीय समिति रो गठन करयो है। उच्चतम न्यायालय रा पहली आला न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी री अध्यक्षता माए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जी। मुख्य न्यायाधीश सी जे आई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्यावाची और जस्टिस वी मोहनारी पीठ ने आ समिति नियुक्त करी है। ध्यानजोग है कि दिल्ली माए 20 जुलाई ने कथित परीक्षा पेपर लीक ने लेर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी रे नेतृत्व माए संसद ताई निकालिया गया मार्च रे चालता हिंसक झड़पा हुई। भीड़ कानी सू बैरिकेड्स तोड़ने रे चालता प्रदर्शनकारियां और सुरक्षा कर्मियां दोनों पक्षां रा कई जना घायल वे गया। राज्य भर माए विशेष वाहन जांच अभियान चलायो जा रियो है। वाणिज्यिक कर महकमेरी कानिसू चलाया

जारिया इन अभियान रे तहत कर चोरी करने और बिना वैध दस्तावेजा रे माल परिवहन करने वाला वाहनारी जांच करी जा रही है। विभागीय कार्रवाई रे तहत इन महीने अवे ताई 13 परिवहन वाहना ने पकड़ियो गयो। महकमारी कानीसू सगला ट्रांसपोर्टरा और करदातावां सू अपील करी जी है कि वे माल रे परिवहन करते वक्त टैक्स इनवॉइस ई वेव बिल जरूरी रूप सू साथे रखे। माल परिवहन सू जुड़ियोड़ा दस्तावेज माए किनी भी प्रकार री गड़बड़ी पाया जावण माथे परिवहन करता रे साथे कड़ी कार्रवाई करी जावेली। देश री पहली वंदे भारत फ्रेंट ट्रेन रो कोटा रोल खुर्द सेक्शन माथे सफल ट्रायल करियो गयो। पश्चिम मध्य रेलवे रा कोटा मंडल माए प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल फ्रेंट EMU रेक रो खाली अवस्था माए ऑसिलेशन ट्रायल आज पूरो करियो गयो है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन बतायो के ट्रायल रे चालता कई चीजा री जांच करी जी। 135 किलोमीटर री रफ्तार रे चालता इंड्रा बैंकिंग सिस्टम थर्मल क्षमता और दूजा तकनीकी आंकलन करया गया। जांच रे चालता चौमहला सू शामगढ़ रे बीच रैक ने पहलिया 120 और फिर 135 किलोमीटर प्रति घंटे री रफ्तार सू चलायो गयो। वठी ने अंतिम चरण माए चौमहला सू गुड़ा रा बीच इन्हें अधिकतम 145 किलोमीटर प्रति घंटे री परीक्षण गति माथे सफलतापूर्वक दौड़ायो गयो। वर्तमान माए निर्धारित कार्यक्रम रे तहत रैक री विद्युत और प्रणोदन प्रणालियां रे प्रदर्शन रो आकलन करने खातिर विद्युत संबंधी जांच भी करी जा रही है। इन महती ट्रायल माए कोटा मंडल रा लोको पायलट मुख्य लोको निरीक्षक और यातायात निरीक्षक रे साथे चेन्नई री एकीकृत कोच फैक्ट्री और दूजा विशेषज्ञ री टीम मौजूद री। और अबे मौसम उत्तरी पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक हिस्सा माए आवता दो दिना बिरखारो दौर बन सके है। मौसम महकमा रे मुजब इंड्र चालता कठेई हल्की तो कठेई कठेई मध्यम बिरखारा आसार है। आज 11 जिला माए बिरखारो अलर्ट जारी करियो गयो है। वठीने काले सू 23 अगस्त ताई श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और आसे पासे रा खेतरा माए बिरखारी आस है। पश्चिमी राजस्थान माए मानसूनी स्थितियां घनकर थोड़ा माए कमजोर रहने री आसार है। बीकानेर महकमा रा उत्तरी भागा माए और शेखावाटी खेतर रा कुछ एक थोड़ा माए हल्की बिरखा वह सके है। इन बीचे आज दोपहर कोटपुतली बहरोड रे विराट नगर और नारायणपुर माए तेज हवावां चाली और हल्की बरसात भी। लाडला 24 घंटा माए बांसवाड़ा माए करीब 1 सेंटीमीटर पानी बरसियो। इनरे अलावा खैरथल तिजारा बारह कोटा प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिला माए भी हल्की बरसात दर्ज हुई। हालांकि प्रदेश रा कुछ एक हिस्सा माए गर्मी और उमस रो असर बनियोड़ो है। श्रीगंगानगर माए 32 तापमान 39 डिग्री ने पार कर दियो है। डीग जिला री 220 पंचायता माए 440 अमृत पोषण वाटिकावां बनाई जावेली। इनरे माध्यम सू टाबरा माए कुपोषण दूर करने रे जतन करिया जावेला। डीग रा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अहलकार मोहन सिंह बतायो कि आ वाटिकावां माए जैविक सब्जियां फल और औषधीय पौधा उगाया जावेला जकारो उपयोग महिलावां और टाबरा रे पोषाहार माए वेला। इनरे खातिर राजीविका समूह और ग्राम पंचायता रे साथे बैठक कर कार्य योजना ने अंतिम रूप दियो जा रियो है। ए वाटिकावां राजीविका रा महिला स्वयं सहायता समूह रे मार्फत चलाया जावेला। पहली वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी री आज 82वीं जयंती है। श्री गांधी अक्टूबर 1984 सू दिसंबर 1989 ताई प्रधानमंत्री रिया। देश भर माए वारी जयंती सद्भावना दिवस रे रूप माए मनाई जावे है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट माए माने श्रद्धांजलि देवता थका राष्ट्र सेवा और सार्वजनिक जीवन माए मारे योगदान ने याद करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दी। भारत और जापान रा रक्षा मंत्रियों री बैठक नवी दिल्ली माए हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान रा रक्षा मंत्री सिंजीरो कोइजुमी बैठक री सह अध्यक्षता करी। बैठक माए समुद्री सुरक्षा ने मजबूत करने मेक इन इंडिया रे तहत रक्षा प्रौद्योगिकी ने बढ़ावो देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने माथे चर्चा हुई। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा सहयोग माथे एक समझौता ज्ञापन माथे हस्ताक्षर करया। इनसु पहले रक्षा मंत्री श्री सिंह जापान रे कुमामोतो खेतर माए आया। भीषण भूकंप रे पाछे भारत री कानीसू संवेदना और एकजुटता जताई। श्री सिंह कयो के एशिया रा दो प्रमुख लोकतंत्र होने रे नाते भारत और जापान माथे शांति स्थिरता और समृद्धि पक्की करने री मोटी जिम्मेदारी है। दोनों नेतावां समुद्री संचार मार्गारी सुरक्षा खातिर दोनों देशां रे बीच समन्वय मजबूत करने माथे सहमति जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

0: 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणियों प्रसारित कर्या जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला आ हर महीने प्रसारित कर्या जावण वाला ई कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला ई सारू आप ई 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे राय भेज सको हो। नंबर एक कर फेरू सुन लो, 1800-117800 माथे राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ई विचार भेजा जा सके है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। राज्य विधानसभा रो मॉनसून सत्र आज सू शुरू व्यो, विपक्ष सदन री कार्रवाई माए हिस्सो नी लियो। राज्य माए नगरीय निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता रे चालता निशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टा जारी नी वेला। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली रे जंतर मंतर माथे छात्र प्रदर्शन माथे कथित बल प्रयोग री जांच खातिर उच्च स्तरीय समिति गठित करीजी है। और देश री पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन रो कोटा रोल खुर्द सेक्शन माथे सफल ट्रायल। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय शाम के ठीक 7 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसानवाणी कार्यक्रम सुन बड़ा सगला श्रोताओं ने आशा धाबाई का घना घना राम राम, और राजू भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा बहन आपने भी राम राम, और सगला किसानवाणी कार्यक्रम सुन बड़ा श्रोताओं ने भी राजू चौधरी रो घनो घनो राम राम सा।
6: और देखो सा रामा शामा के साथ ही आज बात कर रहा आप कि अपना जी का काश्तकार भया छे वाने खेती बाड़ी में दोहरों फायदो लेबा के ताई जरूरी छे कि टाइम सारू आपका जो काम छे करबा का वे कर लेनी चाहिए। और राजू भाई अबार को टाइम तो यही छे कि जो भी फसला उगरी छे वहां से चोखो उत्पादन लेबा के ताई वहां में संरक्षण को पूरो पूरो ध्यान रखनी चाहिए।
7: बिल्कुल सा, और देखो संरक्षण नहीं करा आपा तो फसल की जो आपने जो उत्पादन है क्षमता है वह खराब हो सी, आपने जो आमदनी है वह भी कम हो सी। तो एक लिए अपन देखो अपनी जो फसल है बिन अपन रोजिना का जो काम है बिन शामिल कर अपन रोजिना देखभाल भी करनी चाहिए, ताकि आपने जो को फसल है बिम जो को ऊपर का कोई कीड़ा है रस चूस वाला है या कोई फली खा वाला है या और कोई फल न खराब कर वाला है या जमीन में कोई दीमक या सफेद लट है या कोई रोग आ रहा है, तो बिको आप फसल न देख और बिको निरीक्षण कर और बिके आपने अगर समझ में आ रही है तो आप उचित उपाय करा नहीं नजदीकी जो को कृषि कार्यालय बिम कृषि विशेषज्ञों संपर्क कर और आपने जो को फसल है बिन बचाव को उपाय कर या जो भी एक मायने आप दवाई है या और कोई संरक्षण को उपाय है वो अपना

0: अपनी फसल ना सुरक्षित कर सका और भी आप अपना उत्पादन बढ़ा और अपनी आमदनी भी बढ़ा सका
1: जी। और इमें सबसे मोटी ध्यान रखवा की बात यही है भाई, खेत को निरीक्षण नियमित रूप से करवो जरूरी है। और जो भी आपका समझ में आ रहे हो या जी आप बताया भाई समझ में कोना रहे हो, तो नजदीकी कृषि केंद्र पर जार विशेषज्ञ से सलाह ले, जो भी सिफारिश की गई है वही अनुसार आपने दवाई को जो छिड़काव या बुरकाव है वो करना है। दवाई भी आपने सही दुकान से वही लेनी चाहिए जो विशेषज्ञ द्वारा बताई गई है, उनको बिल भी जरूर लेनो चाहिए। और छिड़काव और बुरकाव करती टाइम समुचित सही मात्रा को भी ध्यान रखना चाहिए, विधि काई चे इको भी आपने ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कम से कम दवाओं को रासायनिक छिड़काव करता हुआ आप अपनी फसल ने सुरक्षित रख सका, जिसो की उत्पादन चोखो मिले और मानव स्वास्थ्य पर भी इको कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। और राजू भाई के साथ साथ ही जो कपास की अपनी फसल है जो काश्त करवाया ले रखे है उनमें भी संरक्षण पर पूरा ध्यान देना अबार जरूरी है। जी की अबार फूल बन रहे थे, फूल गिर भी रहे थे, इकी भी समस्या आ रही है, तो काश्त करवाया समय को ध्यान रखता हुआ इस चीज का महत्व ने समझता हुआ पूरा सही तरीका से वो फसल में भी संरक्षण करे ताकि कपास में भी चोखू उत्पादन ले पावे। एक और बात यह भी जरूर ध्यान रखे कि देखो कई जगह तो बरसात हो रही कोने पर कई जगह खूब हो रही है, तो उस जगह यो ध्यान रखो कि आप खेत में जल निकास की पूरी उचित व्यवस्था कर रखो ताकि न तो आपकी फसल गले और न कोई ज्यादा कीड़ा बीमारियां पड़े और आप सुरक्षित उत्पादन ले सको।
0: बिल्कुल सा, और देखो संरक्षण आप जो जल निकास करा तो जल को अपन संरक्षण भी करना चाहिए ताकि देखो कम जगह बरसात हो रही है जिस क्षेत्र में तो आपने जो को फसल की जल मांग है तो बी के अनुसार आप फसल ने सिंचाई भी देवा और आपने जो फसल की आवश्यकता से ज्यादा जो पानी है वो बेर जा रही है तो बिना आप अगली फसल में या इस फसल में ही जरूरत पड़वा पर काम ले सका तो इसको अपन संरक्षण भी करवो जरूरी है।
1: बिल्कुल सा। और राजू भाई जरूरी तो यह भी है कि विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में आ चुके हैं, अपना अभिलाषा बैंड वाने ले आया है, तो विषय विशेषज्ञ कई जानकारी दे रहे थे या आप सब नहीं सुननी भी चाहिए और आपने बता देवा हरा चारा की फसल की उन्नत खेती इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अतर सिंह मीणा और यहाँ से बातचीत कर रही है अपनी अभिलाषा बैंड। तो राजू भाई आप सगला ही मिलर सुना
0: सुना सा
2: हरा चारा की फसला की उन्नत खेती ई विषय मात्र जानकारी देवा खातिर अपने साथ हैं डॉक्टर अतर सिंह मीणा पूर्व अतिरिक्त निदेशक कृषि। तो डॉक्टर साहब आपको कार्यक्रम में गणो गुणो स्वागत। राम राम सा।
3: राम राम सर।
2: तो सर जहाँ की आप बात कर रहे हैं हरा चारा की उन्नत खेती का बारे में, तो यू ही बताओ की हरा चारा अपनी खेती बाड़ी में या अपने पशु पालन में काई महत्व है सर?
3: देखो हरे चारे का महत्व तो इतना है कि तमिल में कहावत है कि चारा नहीं तो पशु नहीं और पशु नहीं तो खाद नहीं और खाद नहीं तो फसल नहीं।
2: जी तो सर देखो या तो आप जाने हरिया चारा को महत्व, क्योंकि देखो अपना जो किसान साथी है वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करे छे और पशुपालन का उन्नत विकास के तानी आपने जो हरो चारो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखे छे। तो बात करा आप हरा चारा की कौन कौन सी फसला छे और ये कौन कौन सा मौसम में उगाई जाओ छे?
3: देखो हरे चारे की मुख्य रूप से तीन मौसम होते हैं, जो बरसात का मौसम उसे खरीफ कहते हैं और जो सर्दियों का है रबी और गर्मियों के मौसम को जायद। तो तीनों मौसम में खरीफ की और जो जायद की फसलें हैं वो उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है और ग्वार, मुख्य रूप से ये पांच फसल हैं। और जो सर्दियों की जो रबी है उसमें रिजका, वर्सीम, जई, ये तीन महत्वपूर्ण फसल है जो रबी सीजन में उगाई जाती है।
2: तो सर बात करें आप खरीफ का मौसम में उगाई जाने वाली फसल की, तो यहाँ की खेती में जो महत्वपूर्ण कृषि विधियां हैं वे कौन कौन सी है?
3: देखो कृषि विधियों में सबसे पहले तो जिस खेत में या भूमि पर हम फसल उगाते हैं तो उसका चयन है, क्योंकि अधिकांश जो अपन की खरीफ की फसलें जैसे ये दोमट, बलौ दोमट या कई जैसे ज्वार जैसी फसल चिकनी भूमि भी इसको आवश्यक होती है, तो मुख्य रूप से इन सारे फसलों में ये भूमि की आवश्यकता है। भूमि की तैयारी में ऐसा है कि एक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं और दो तीन जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर समतल कर लेते हैं। भूमि की तैयारी के बाद हम भूमि का उपचार करते हैं, तो भूमि को उपचार के लिए ताकि उसमें कीट व्याधि का प्रकोप नहीं हो, दीमक का प्रकोप नहीं हो, तो उसके लिए अपन जैसे क्विनाल फॉस का पाउडर है, दीमक की दवाई उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में जो बीज लाते हैं तो उसका बीज उपचार करते हैं, बीज उपचार के लिए जैसे कीट व्याधि का प्रकोप नहीं हो तो उसके लिए ज्यादातर हम जैसे कार्मोडेज में दवाई आती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचार कर लेते हैं। और जो अपन के कीड़े लगते हैं उसमें क्लोरोपाइरोपोरस है 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के दर से उसको उपचारित कर लेते हैं। थायरम का भी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। बुबाई की विधि में ज्यादातर या तो छिटकमा विधि से बोते हैं या कतारों में बोते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल क्योंकि सीड ड्रिल चल गया है तो कतारों में बोते हैं। और

0: इसमें ज्यादातर की जैसे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे की होती है। बीज दर की बात जहां ज्यादा दर करें तो ज्वार में जैसे 40-50 किलोग्राम अकेली फसल बोते हैं तो उसमें प्रति हेक्टर बीज की दर जरूरत पड़ती है। बाजरे में 10-12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है और ग्वार में 35-40 किलोग्राम प्रति हेक्टर और जो लोबिया चौला जिसको बोलते हैं उसमें भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है। मक्का की फसल में अपन 60 से 80 किलोग्राम तक बो सकते हैं तो वो बीज दर है। और मिश्रित में यदि क्योंकि कई बार ऐसा है कि अपन जैसे ज्वार बाजरा मक्का इसके साथ यदि चौला और ग्वार यदि मिलवा करके बोते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, पौष्टिकता भी बढ़ती है, तो उसमें बीज दर थोड़ा जैसे अपन ज्वार के साथ मिश्रित करेंगे तो 20 से 26 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी उसकी ज्वार में एक मिश्रित में, 6 से 7 किलोग्राम बाजरा, 20 से 25 किलोग्राम ग्वार की जरूरत पड़ती है यदि मिश्रित बुनी है और 15 से 20 किलोग्राम उसके चौले की जरूरत पड़ती है यदि मिश्रित करके यदि आप ज्वार बाजरा मक्का के साथ बोते हो। अब ये जो बुवाई का समय जैसे बताया क्योंकि वो ग्रीष्मकालीन है तो वो फरवरी मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक अपन वर्षाकालीन फसल बोते हैं और जो गर्मियों की है वो भी 15 ये क्योंकि इनका पीरियड 15 फरवरी मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक लगातार कभी भी बो सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा क्योंकि खाद बहुत जरूरी है, बिना खाद के
1: बिल्कुल सर
0: कुछ भी पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो जैसे ही अपन भूमि की तैयारी जब करते हैं तो उस समय 10-12 प्रति हेक्टर के हिसाब से सड़ी गली गोबर की खाद उसमें डाल देते हैं और उसके बाद में अपन जैसे नत्रजन युक्त उर्वरक है जैसे यूरिया है डीएपी है, ज्वार की फसल में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 2/3 बुवाई के समय और 1/3 मात्रा बुवाई के 35 से 40 दिन बाद एवं प्रत्येक कटाई पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर अतिरिक्त नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करना चाहिए
1: जी।
0: बाजरे की फसल में 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर 2/3 बुवाई के समय 30-35 दिन बाद में फिर एक डालना चाहिए और एक कटाई के बाद 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रति कटाई पर भी अतिरिक्त नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक ग्वार में है तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है, चौले में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर प्रयोग करना चाहिए और मक्का में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुवाई के समय और 1/3 मात्रा बुवाई के 30-35 दिन बाद जब पहली कटाई करते हैं उसके बाद में प्रयोग करना चाहिए
1: जी सर।
0: 40 से 60 किलोग्राम जैसे ज्वार की फसल है उसमें फास्फोरस प्रति हेक्टर बुवाई के समय मशीन से ड्रिल करके दे देते हैं और बाजरे में भी 40 से 60 किलोग्राम मात्रा फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और 30 से 40 किलोग्राम ग्वार में और 30 से 40 किलोग्राम ही फास्फोरस चौले की फसल में, मक्का की फसल में 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुवाई के समय भूमि में करीब 10 सेंटीमीटर गहराई पर ओढ़कर प्रयोग करना चाहिए
1: जी सर।
0: इसके अलावा बहुत सी मिश्रित फसल में जैसे ज्वार के साथ साथ यदि ग्वार को मिश्रित करेंगे तो 75 से 100% बीज दर, चौले में मिश्रण करेंगे तो 25 से 50%, बाजरे के साथ ग्वार और चौला, ग्वार के साथ बाजरा और ज्वार, चौले के साथ ज्वार बाजरा और मक्का के साथ चौला या ग्वार जैसा कि मैंने पहले बताया था मिश्रित फसल में मिश्रित फसल के रूप में ले सकते हैं। तो खरपतवार और कीट नियंत्रण भी चारे की फसलों में महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियां हैं। बुवाई के पूर्व पलेबा देकर खरपतवार नष्ट करें क्योंकि पलेबा देंगे तो थोड़ा वो खरपतवार उगाएंगे तो उनको हम नष्ट कर देते हैं, बाद में खरपतवारों को 1-2 निराई करके निकाल दें और निराई गुड़ाई के भील या हैंड हो आता है उससे हम कर सकते हैं, वैसे खुरपी से भी निराई गुड़ाई करते हैं
1: जी।
0: तो उसके भी ध्यान रखें। बाकी तो यदि रासायनिक नियंत्रण करते हैं तो एट्राजीन दवाई आती है 0.5 किलोग्राम मात्रा, उसके द्वारा भी नियंत्रण होता है। बाजरे में भी जैसे बुवाई के तीसरे या चौथे सप्ते तक खेत में निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालते रहें। खरपतवार नष्ट करने के लिए बुवाई के तुरंत बाद जैसे ही वो अंकुरण हो पूर्व प्रति हेक्टर 500 किलोग्राम वो एट्राजीन 800 लीटर पानी में घोलकर उससे नियंत्रण कर सकते हैं। ज्वार बाजरा मक्के तीनों में ही एट्राजीन केमिकल खरपतवार नियंत्रण के काम आता है। खरपतवार ग्वार में करना है तो 25 से 35 दिन के बाद में वो निराई गुड़ाई करके अपन निकाल सकते हैं खरपतवारों को। इसी प्रकार चौले में भी 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर जो हैंड हो या भील हो या खुरपी है उसके द्वारा निकाल सकते हैं। मक्के में खरपतवारों का काफी क्योंकि नुकसान होता है तो उसको 30 से 35 दिन बाद इसको निराई गुड़ाई करके अवश्य नियंत्रण करना चाहिए और वर्षा के दिन मक्का में एट्राजीन जो खरपतवार नाशी है उसकी 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के तुरंत बाद छिड़कना चाहिए ताकि वो बीट का नियंत्रण हो सके।
1: तो सर देखो खरीफ के पाचे बात करें आप जायद की तो जायद में उगाई जाने वाली जो फसला है वहाँ की खेती अपना किसान साथी की कर करे सर।
0: देखो जायद में ज्यादातर वही फसलें हैं जो खरीफ में बोई जाती हैं
1: जी,
0: जैसे जिनकी उन्नत कृषि विधियों के बारे में मैंने उल्लेख किया, ज्वार बाजरा मक्का ग्वार है लोबिया।

0: ध्यान रखना चाहिए और खाद उर्वरक का समय पर प्रयोग करना है।
1: जी तो सर देखो खरीफ और जायद के पाचे महत्वपूर्ण समय हुए छे रवि भी, तो रवि का मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है बाकी खेती कौन कौन सी कृषि विधियां के द्वारा अपना किसान भाई कर सके?
0: देखो रवि में जो मुख्य फसल है उसमें जैसे एक तो रिजका है, बरसीम है, जई है। हालांकि इसके अलावा भी कई जगह आजकल चुकंदर भी आ गया है एक चारे वाला, और अन्य फसल भी है इस तरह की है, जो नागफनी भी एक आ गई है जिसमें कांटे रहते हैं, जो अपरंपरागत फसलें। जैसे अपन बरसीम को चारा फसलों का राजा कहते हैं, इसमें जो पोषक तत्व है, इसमें जो विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, तो ये जो आपकी बरसीम की जो फसल है ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक बोई जाती है, और इसमें करीब 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है बरसीम।
1: जी, जी।
0: और ये जो है मुख्य रूप से बलु दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसको अन्य तो ये दोमट या बलु दोमट में हो जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ी चिकनी मिट्टी में भी पैदा हो सकती है। बीज दर जैसे मैंने बताई वो 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है, प्रमाणित बीज लेना चाहिए राजस्थान राज्य बीज निगम में या राष्ट्रीय बीज निगम में या जो विश्वसनीय जो बीज विक्रेता है उनसे बीज लेके बोना चाहिए। और बीज बोने से पूर्व ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बीज को प्रमाणित कर लें और मिट्टी का भी उपचार कर लेना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए देखो जैसे अपन कवकनाशी से करते हैं या कीटनाशी से करते हैं, और एक कल्चर इसको FIR के नाम से बोलते हैं, इस सीरीज में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले अपन कल्चर से कर लें कीटनाशी, तो श्रृंखला को ध्यान रखना चाहिए किसानों को। किसी भी फसल का यदि बीज उपचार करते हैं तो सबसे पहले कवकनाशी से करो, फिर कीटनाशी से, और उसके बाद कल्चर से उपचार करना चाहिए। उसके बाद बोने की जहां तक है छिड़कमा विधि या सीड ड्रिल से जो भी बो रहे हैं किसान भाई वो बोने चाहिए। भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नमी नहीं होगी तो अंकुरण नहीं होगा। खाद और उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि खाद उर्वरक नहीं डाला तो जैसा कहते हैं कि जैसा डालो खाद ऐसा देगा स्वाद, तो वो वाली बात है कि पैदा होगी। तो उसमें गोबर और कंपोस्ट की खाद, बरसी में हम 15-20 टन प्रति हेक्टर गोबर या कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करते हैं। नत्रजन के लिए 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नत्रजन की जरूरत पड़ती बरसीम की फसल में। फास्फोरस 80 किलोग्राम, जो फास्फोरस की पूरी मात्रा हम अंतिम जुताई के समय डाल देते हैं। नत्रजन की मात्रा या तो एक साथ भी डाल सकते हैं या दो टुकड़े में बाद में भी पहली कटाई के समय भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दूसरी फसल आती है जैसे रिजका, इसको भी चारों की रानी कहा जाता है। गुणवत्ता जो पौष्टिकता है उसके आधार पर ही इसको क्वीन ऑफ फोडर मतलब चारों की रानी कहते हैं। और इसके लिए जो बुवाई का समय है वो अक्टूबर से नवंबर मध्य तक है। इसमें जो भूमि है वो थोड़ी बलु दोमट दोमट भी चली जाएगी, रेतीली, इसमें चिकनी भूमि उसकी जरूरत नहीं है। 15-20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की इसमें जरूरत पड़ती है। और गोबर या कंपोस्ट की खाद की बात करें तो 20-25 टन प्रति हेक्टर हम इसमें गोबर कंपोस्ट का खाद प्रयोग करते हैं। नत्रजन की मात्रा है वो 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर रिजका की फसल में जरूरत पड़ती है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डाल देनी चाहिए तथा नत्रजन की शेष मात्रा 3 भागों में बांटकर प्रत्येक दूसरी कटाई के बाद छिड़क कर हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जहां तक है वो पहले देखो निराई गुड़ाई की ज्यादातर सलाह देते हैं, क्योंकि किसान काट कर खिलाते रहते हैं तो पशु को नुकसान होता है, तो इसको जो यांत्रिक विधि है उससे निराई गुड़ाई करनी चाहिए, चाहे बरसीम की हो चाहे रिजका की फसल हो। जहां तक रबी की फसलों की किस्मों की बात है, जैसे रिजका है उसमें आनंद 2 है, आनंद 3 है, RL88 है, या सिरसा 8 है, सिरसा 9 है, जिसको टाइप 8 और टाइप 9 के नाम से एक फ्री 244। इसी और बरसीम में जो किस्म है उसमें बरदान है, मस्का भी है, एक खदरा भी किस्म भी आती है, पूसा जॉइंट है, BL10 है, BL JB1 के नाम से भी आती है, BL1 है। इसके अलावा T780, T678 और जो जई की है उसमें केंट है, OS6 है, OS7 है, UPO94 OL9 है। इसके अलावा GHO कई है, जैसे 829 है, 822 है, 851 है, या GHO 1 है, 2004 नाम से भी एक किस्म आती है। जहां तक जैसे जई में, क्योंकि इनका भी टाइम जो था वो बुवाई का वही नवंबर का पहला पखवाड़ा था, 100 किलोग्राम बीज इसमें जई में जरूरत पड़ती है, और गोबर की खाद भी वही 15-20 टन और फास्फोरस करीब 30 किलोग्राम, नत्रजन 80 किलोग्राम, 40 किलोग्राम नत्रजन एवं पूरा फास्फोरस बुवाई के समय हम बोते हैं, शेष 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बुवाई के बाद डालते हैं।
1: जी तो सर एक बात करें आप की जो हरा चारा की फसलें हैं, अब थोड़ी देर पहले आप बोले कि कटाई भी एक महत्वपूर्ण भाग निभाव चाहिए, तो यहाँ की कटाई आपने कब करनी चाहिए?
0: एक तो ज्यादातर जैसे मैं बता रहा था कि ज्यादातर जो किस्म है

0: उनमें क्योंकि कटाई जैसे एक तो फूल आते समय, क्योंकि फूल आने से पहले हम यदि करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें क्या है हाइड्रोसायनिक एसिड होता है, उसमें जहरीला तत्व आता है, तो फूल आने के बाद ही मतलब उस अवस्था में हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। विशेष रूप से हम जैसे इसकी रिज़का बरसीम की बात करें तो रिज़का बरसीम में रिज़का है पहली कटाई 55 से 60 दिन बाद और अन्य कटाइयां 35 से 40 दिन बाद। ऐसे जई में पहली कटाई 60 से 70 दिन बाद, अन्य कटाइयां 55 से 60 दिन बाद। बरसीम में पहली कटाई बोने के 50 से 55 दिन बाद और अन्य कटाइयां 40 से 50 दिन बाद हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। तो ज्वार की फसल की प्रथम कटाई फूल आना शुरू होने के बाद 50% फूल आने पर बुवाई के 60 से 65 दिन बाद इन बाद की कटाइयां 40 से 45 दिन अंतराल पर करें। फसल की प्रथम कटाई भूमि से 6 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करनी चाहिए ताकि वो दोबारा से बढ़ सके, फूट सके। हाँ, ऐसे ही बाजरा है उसमें प्रथम कटाई फूल आते समय करें, जैसे ही 55 से 60 दिन की फसल हो जाए, और बाद की कटाइयां 35 से 40 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। फसल की प्रथम कटाई वही भूमि से 8-10 सेंटीमीटर जैसे ज्वार में करी, ऐसे ही बाजरा में करनी चाहिए। ग्वार की फसल 65 से 70 दिन बाद फलियां बनने लगे तब करनी चाहिए। चौले की फसल की कटाई 65 से 70 दिन बाद वही जैसे उसमें फलियां आए तब करना चाहिए। मक्का में 50% जैसे ही वो टेसल जो मंजरे निकलते हैं उस अवस्था में बुवाई के 65 से 75 दिन बाद कटाई करें। हरे भुट्टों के लिए ली गई उन्नत किस्मों के भुट्टे लगने के बाद हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कटाई की अवस्था हुई।
1: तो किसान साथियों, जानकारी देवा खातिर आपने साथ है डॉक्टर रतन सिंह मीना, पूर्व अतिरिक्त निदेशक कृषि, और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रहे हो हरा चारा की फसला की उन्नत खेती। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में पधारे और आपका माध्यम से इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी माँ का किसान साथियों तक पहुँची। एक ताणी पूरा आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको घना मानसु धन्यवाद साहब।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे हैं?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: राजू भाई, डॉक्टर अतर सिंह मीणा, अतिरिक्त निदेशक कृषि सेवानिवृत्त, आज अपना कार्यक्रम में आया और आपने बताया कि हरा चारा की फसलों की उन्नत खेती की तरीका से कर काश्तकार बाया फायदो ले सके छे, और यहाँ से इतनी चोखी तरीका से बात करे अभिलाषा बहन, तो यहाँ दुनिया ने खूब खूब धन्यवाद देवा और धन्यवाद स्वरूप।
5: चोको सो एक सुना लोक गीत
1: तो आओ सा सगला ही मिलर सुना।

0: राजू भाई
1: हाँ जी
0: देखो सा चोखो सो गीत तो आपां सुन लिया, गुलाबो सपेरा पार्टी को गायो, और अब काश्तकार भाइयों को कार्यक्रम छे कार्यक्रम किसान वाणी, और किसान भाइयों के लिए ई टाइम मौसम की जानकारी को ध्यान रखबो बहुत जरूरी छे, ताकि कोई भी आबाड़ी जो परेशानी छे उसे बचो जा सके, तो थोड़ी सी जानकारी या भी दे देवा।
1: बिल्कुल सर, देखो आप आज बात करा अपना जयपुर का मौसम की, तो देखो अधिकतम तापमान रही हो 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान रही हो 27 डिग्री, पर बादल बनेड़ा है, बादल बने रहे सी। और आप राजस्थान के पूरा की बात करा मौसम की, तो देखो अपना राजस्थान राज्य का पश्चिमी भाग में मौसम शुष्क बने रही हो, और राज्य का जो पूर्व को भाग है भरतपुर और कोटा संभाग को दिन कड़े कड़े हल्की बरसात हुई, और कड़े कड़े हल्की बरसात होने की संभावना भी है, बादल बने रहे सी।
0: अरसाई मौसम की जानकारी के साथ ही अब कार्यक्रम किसान वाणी को टाइम पूरो होतो जा रहे छे, तो काश्तकार भाया दिराव आज्ञा आशा ने
1: और राजू ने
0: चालार करा
1: राम राम, राम, राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
2: जी।
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा
2: जी।
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका

0: का कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी।
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी,
0: जी।
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी।
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी।
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है।
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा

0: जल चक्र।
1: जल चक्र?
0: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
2: तो चलो शुरू करें।
0: चलो झुमकी।
2: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
3: सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
0: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो।
3: आहा आहा,
0: नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
3: जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
0: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहूं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
3: तालियां तालियां। फिर इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
0: बताते हैं बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
3: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का, जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
0: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
1: बहुत अच्छा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
5: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
6: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
7: हरा दिया, हरा दिया।
8: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
9: जी,
8: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
9: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
8: ये कैसी अजीब बात है?
9: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
8: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
9: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
8: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
9: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
8: अच्छा?
9: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
8: हाँ बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
9: जल्दी
8: मैं किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
9: अरे जीवन काका।
8: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई,

0: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
1: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
0: जी
1: यहाँ लेट जाओ।
0: जी
1: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
2: जी
1: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
2: जी अभी लाई।
1: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
0: जी
1: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
0: जी
1: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
0: जी जी जी, जी।
1: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
2: जी नाना जी।
1: हाँ ला बेटा ला। जीवन
0: जी
1: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।

0: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
0: जी,
1: जिसे बुखार होता
0: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
0: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
0: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
0: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
0: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
0: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
0: जी।
1: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
0: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
0: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
0: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
0: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
0: जी।
1: समझ गई ना?
0: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
0: जी,
1: लगाते डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
0: जी,
1: बोल कर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हा?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

हाँ, मैं आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय रात्रि की ठीक 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि लकीरें मामूली नहीं होती, ये माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार कर देती है। दोस्तों इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आपको लिए चलते हैं आपको अपने फरमाइशी गानों की तरफ। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: सर ये वो फिल्म गाना सुना रहे हमारी जिंदगी में धीरे-धीरे आना।
0: आपको गाना सुनाएंगे, पहले बताइए कौन बात कर रहे हैं आप?
1: उमेश सिंह।
0: उमेश सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम बदवा से कर रहे हैं सर
0: जी। क्या काम करते हैं सर आप?
1: ये जिप्सम लोडिंग का काम करते हैं
0: जी। जी रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सर रेडियो सुनता हूँ।
0: कार्यक्रम कैसे लगते हैं चिरमी चैनल के आपको?
1: बहुत बढ़िया लगता है सर
0: जी। उमेश सिंह जी आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: वो है नहीं हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आना
0: जी, आशिकी फिल्म का गीत है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हाँ जी जी
0: हाँ कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मराम जी बात कर रहे थे। बारानी
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: से। बारानी से खेती
0: बीरमाराम जी, क्या करते हैं आप?
1: का सर।
0: खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी खेतों में क्या क्या बो रखा है आपने?
1: अभी तो सर खेती आई नहीं है, कच्ची है, पकी नहीं है अभी तक।
0: पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है सर आपने?
1: पढ़ाई लिखाई 10वीं तक की सर।
0: बीरमाराम जी, रेडियो कब सुनते हैं आप?
1: रेडियो तो हम 10 साल से सुने सर।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप चिरमी चैनल के?
1: हेलो फरमाइश, हेलो गोरबंद सब सुन रहे हैं साहब, समाचार सुन रहे हैं।
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत बढ़िया लगता है सर। रेडियो
0: जी बीरमाराम जी, रेडियो कैसे सुनते हैं, मोबाइल से फिर रेडियो लगा रखा है आपने?
1: लगाएगा सर।
0: बीरमाराम जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: आज सुनना है हमें राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना,
0: कौन सा गीत?
1: परदेसी रहो, ये गाना है ना ये।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज सुबह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से शुरू हुआ। ये राज्य की 16वीं विधानसभा का छठा सत्र है। इस दौरान दो विधेयक पेश किए गए। विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच सदन की कार्यवाही करीब 21 मिनट चली। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल से मंजूरी प्राप्त विधेयकों का विवरण और जरूरी पत्रादि को सदन के पटल पर रखा गया। साथ ही विधायी काम के तहत गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक पुनर्स्थापित किया गया। कांग्रेस विधायकों ने जयपुर के मूक बधिर पोद्दार स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा विभाग की ओर से मीडिया कवरेज पर लगाई गई कथित पाबंदी को लेकर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पोद्दार स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायकों समेत अनेक बड़े नेता हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर तक पहुंचे। संभवतः प्रदेश में ये पहली बार हुआ है जब विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मॉनसून सत्र में पधारने वाले विधायकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए विपक्ष की बेंचों को खाली देखकर पीड़ा भी जताई। स्पीकर श्री देवनानी ने कहा कि ये स्थिति ठीक नहीं है। विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है और उनके विषयों का सम्मान किया जाएगा। विपक्ष को मर्यादा और विधानसभा के नियमों के तहत अपने मुद्दे रखने चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि जिस गेट से आने की व्यवस्था है उसी गेट से एक एक करके सदस्य अंदर आ जाएं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विधायकों को एक एक करके सदन में आने की अनुमति देने की बात कही गई थी, पर वे नहीं आए। उन्होंने सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा की कि सरकार विपक्ष के मुद्दों पर संज्ञान लेकर जवाब देगी। श्री देवनानी ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस विधायक दल की गैर मौजूदगी पर कहा कि विपक्ष बिना किसी कारण के सदन में अनुपस्थित रहा है। विपक्ष का ये व्यवहार लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था की अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सदन की परंपराओं का पालन करने पर सहमति भी बनी थी। विधानसभा की स्वस्थ परंपराओं का पालन होना चाहिए। श्री पटेल ने आरोप लगाया कि विपक्ष गलत व्यवहार कर रहा है। सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी कांग्रेस विधायकों के सदन में गैर मौजूद रहने पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। विरोध दर्ज कराने का भी एक तरीका होता है, लेकिन विधानसभा के मुख्य द्वार पर चढ़ना, उसे तोड़ने का प्रयास करना और जबरन भीतर घुसने की जिद करना सुरक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है। विधानसभा में आने की जो निरंतर कई वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है उसकी अवहेलना की गई है। श्री गर्ग ने स्पष्ट किया कि विधानसभा की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। इससे पहले कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में स्कूलों की स्थिति पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक पश्चिमी द्वार से ही अंदर प्रवेश करने का प्रयास

कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों से भी नोकझोंक हुई थी। सदन में विधायी कार्य के दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 पुनर्स्थापित किया। इस बात पर विधायक सुभाष गर्ग ने एतराज जताया तो स्पीकर श्री देवनानी ने कहा कि आज पुनर्स्थापित करेंगे तभी कल से बहस कर पाएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित किया। आगामी दिनों में विस्तृत चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक के जरिए प्रदेश में पेड़ों के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है, तो वहीं गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए निजी विश्वविद्यालय से जुड़े कानूनी प्रावधानों को सदन की मंजूरी की प्रक्रिया में लाया गया है। आज सदन में पिछले सत्र और वर्तमान सत्र के बीच दिवंगत हुए पूर्व राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के निधन पर शोकाभिव्यक्ति और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव, पूर्व सांसद विष्णु मोदी, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत और पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा तथा नवनीत लाल निनामा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके शिक्षा, सुशासन और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका का स्मरण किया। श्री देवनानी ने त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल डी वाई पाटिल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्री पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे 2009 से 2013 तक त्रिपुरा और 2013 से 2014 तक बिहार के राज्यपाल रहे। समाज सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्री देवनानी ने बताया कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। इसी तरह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव अगस्त से सितंबर 1984 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे। तीन बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने पूर्व सांसद विष्णु मोदी के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी 10वीं राजस्थान विधानसभा में पुष्कर तथा 12वीं विधानसभा में मसूदा से विधायक निर्वाचित हुए। वे 8वीं लोकसभा में अजमेर से सांसद रहे। उनका निधन 21 मार्च 2026 को हुआ। श्री देवनानी ने बताया कि पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिए मसूदा से निर्दलीय रूप से विधायक निर्वाचित हुए थे और राजकीय उपक्रम तथा प्राकलन समिति के सदस्य रहे। श्री देवनानी ने बताया कि पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा 7वीं, 8वीं, 13वीं और 15वीं राजस्थान विधानसभा में कठुमर से विधायक रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई समितियों के सदस्य भी रहे। पूर्व विधायक नवनीत लाल निनामा 8वीं, 9वीं, 12वीं और 14वीं राजस्थान विधानसभा में घाटोल से विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा कार्यकाल के दौरान वे अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य और सभापति तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। सदन ने दिवंगत नेताओं के प्रति शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। विधानसभा सत्र के बीच ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात में सत्र की कार्यवाही और सदन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में सत्र के दौरान इस तरह की मुलाकातें नियमित रूप से होती रहती है। मुख्यमंत्री के

0: विधानसभा पहुंचने पर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी देखी गई। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष सदन से दूर रहा और सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाया। विपक्ष पहले ही जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने का सरकार पर आरोप लगा चुका है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को सदन में आकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। इस बीच यूसीसी बिल सत्र में सदन में रखा जा सकता है। बिल में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिल में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने और बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान भी चर्चा में हैं। आदिवासी समुदायों की परंपराओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखने का प्रावधान बताया गया है। शोकाभिव्यक्ति के बाद स्पीकर श्री देवनानी की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति यानी BAC की हुई बैठक में मौजूदा सत्र के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। विधायी कार्य, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और अन्य कार्यों को लेकर समय निर्धारण पर विचार किया गया। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कल तक के लिए सदन का कामकाज तय किया गया है। कल प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये।
2: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, हम आकाशवाणी नागौर के चीमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एक लोकटोन।

अभी आप सुन रहे थे अलगोस अपर लोकतुन। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ होने या इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती की OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी

0: सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हेलो फरमाइश का दूसरा भाग।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
2: सर गोपाल कृष्ण टेक्स एडवोकेट।
1: जी जी गोपाल जी, पहले भी आपसे हमारी बात हो रखी है।
2: जी सर हुई थी।
1: जी गोपाल जी, कैसा चल रहा है आपका कामकाज?
2: मैं सर एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स जीएसटी लोन इंश्योरेंस ये काम है अपने।
1: काम बहुत बढ़िया चल रहा है आपका।
2: जी जी
1: गोपाल जी, फिर रेडियो सुनने का वक्त मिल जाता है आपको?
2: रेडियो देखो सुबह 9 बजे ऑफिस आता हूँ, उस समय से आता है भक्ति वाला, शुरुआत से करता हूँ, ये चलता ही रहता है पूरे दिन।
1: कैसे लगते हैं चिरमी चैनल के कार्यक्रम आपको?
2: भक्ति संगीत में भी अच्छे आते हैं, बाकी सारी न्यूज वगैरह चालू ही रहता है।
1: जी हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
2: जी जी बहुत बढ़िया है। हेलो फरमाइश और ही बढ़िया लगता है।
1: हेलो फरमाइश बहुत बढ़िया लगता है।
2: जी
1: गोपाल जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस
2: सर? आज ये 15 अगस्त अभी निकला है, तो अभी थोड़ा देशभक्ति का, अब के वो है ना क्रांति मूवी का,
1: जी
2: अब के बरस तुझको धरती की रानी कर देंगे, मनोज कुमार और
1: जी
2: हेमा मालिनी का।
1: महेंद्र कपूर की आवाज है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो जी, मैं
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
0: जय प्रकाश बोलूँ जी, कर्डू
1: जय प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
0: से।
1: करडू, ये कहाँ पे पड़ता है सर? करडू
0: ये राजेश्वर स्टेशन के पास,
1: वेद प्रकाश जी।
0: गंगानगर। खेती
1: जी वेद प्रकाश जी, क्या करते हैं आप?
0: का काम करते हैं सर,
1: खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी खेतों में क्या क्या बो रखा है आपने?
0: खेत में ग्वार, मूंग है, मोठ है।
1: जी, फसल अच्छी है इस बार?
0: हाँ ठीक है सर, बरसात नहीं है अभी तक।
1: जी वेद प्रकाश जी, रेडियो सुनते हैं आप?
0: हाँ रेडियो तो मेरे पास है नहीं, मैं तो फोन से आपका आकाशवाणी सुन रहा हूँ।
1: जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
0: कोई रफी साहब का सुना दीजिए, ले ले मजनू का।
1: हम सुनवा रहे हैं
0: ठीक है
1: आपकी और हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: सर न्याज पेंटर बोल रहा हूँ, लोहारपुरा से।
0: क्या बात है पेंटर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, काम काज कैसा चल रहा है आपका?
1: सर बहुत अच्छा चल रहा सर,
0: बढ़िया चल रहा है नियाज भाई। यानी आप काम करते रहते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं
1: पूरे स्टाफ के साथ सुनते हैं सर।
0: जी? कैसे लगते हैं चिरमे चैनल के कार्यक्रम
1: सर
0: आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं सर।
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है सर?
1: अरे सर बहुत अच्छा है, आपके टाइम का इंतजार रहता है।
0: जी नियाज भाई, बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर फिल्म का नाम है अनोखी अदा।
0: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ थे तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकार

0: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक

0: डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी।

0: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की एफएम फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाए कुछ गजलें।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गज़लों का प्रोग्राम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है पासपोर्ट।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान। साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये गाना
3: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
2: संगीतकार सचिन देव बर्मल
3: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। उस बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

18 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

0: दिल लगी। इस फिल्म ने
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ आ

फिर उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

दिल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया और बस वो रम गए इस किरदार में।

वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं। इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सिर्फ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

12 में सेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले सेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में सेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं

रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी सैफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सैफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सेफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी इस चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

साइन करते हैं, क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीग से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, काला कांटी, बाजार और शिफ्ट। शिफ्ट फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग दी। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्रेट गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 8:53 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।